जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अब हमारी आज की सभा शुरू होती है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आइए मिलकर अपने दिन की शुरुआत करें आजाद हिंद गान के साथ।

के बहुत से लोग जीवन के प्रति निराशाजनक होते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं होना है। ईश्वर ने इतना कुछ हमको दिया है। जीवन जो होता है ना, इतना बेशकीमती है कि इस जीवन का एक पल भी हम करोड़ों खरबों अरबों रुपए खर्च करके भी पा नहीं सकते, या इसके बदले में हम कुछ भी दे नहीं सकते हैं। ये जीवन अनमोल है दोस्तों, कभी भी निराशा के भाव में मत डूब जाइए। देखिए, परेशानियां और विपत्तियां तो सबके ऊपर आती हैं, ये तूफान जिंदगी में सबके आते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट कैसा है, आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या कहीं आपकी संगत ऐसी नहीं हो गई जो आपको लगातार निराशा की ओर धकेल रही है। दोस्तों, हमारी संगति का असर हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। जीवन जीने के लिए, एक बेहतर जीवन बनाने के लिए सबसे जरूरी बात है हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए और हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कितने भी कठिन दौर से आप क्यों ना गुजर रहे हो, एक दिन सब अच्छा होगा। यही हमारे पास सबसे बड़ा रामबाण उपाय है।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
7: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सही समझने वाला व्यक्ति डगमगाएगा नहीं, धैर्य रखोगे तो सफलता का समय आएगा ही। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो। जी हां दोस्तों, अगर आप सही राह पर चलते हैं, सही बातें समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं, परखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हां धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब हम धैर्य नहीं रख पाते। इसीलिए जो व्यक्ति धैर्य रखते हुए आगे बढ़ता है, एक दिन सफलता उसके कदमों में जरूर आती है। सफर का मजा लीजिए दोस्तों, कठिन है लेकिन यही है, इसके बाद ही आपको सफलता का आनंद आएगा। कामयाबी का आनंद वही इंसान ले सकता है जिसने कठिन परिस्थितियों का भी आनंद लिया हो। कठिन दौर से गुजरे, परेशानियों से गुजरे, पीड़ाओं से गुजरे, दुख दरिद्रता से गुजरे, तो घबराइए और डगमगाइएगा नहीं, आपकी मंजिल सामने है, उस पर फोकस रखिए। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कितनी भी मानसिक या शारीरिक पीड़ा क्यों ना हो, एक दिन आप इससे पार चले जाएंगे। आपका ये ध्येय, आपका ये टारगेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, पावर बनेगा दोस्तों। क्योंकि जो इंसान खुद अपना साथ नहीं दे पाता, उसका साथ दुनिया में कोई नहीं दे सकता।

असफलता का अर्थ ये नहीं होता कि आप समाप्त हो गए हैं, इसका अर्थ होता है कि आपको एक और रास्ता आजमाना है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, आपका फिर से स्वागत करता हूं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूं वास्तु कृष्णा। दोस्तों, अक्सर असफलता से हम सभी हार मान बैठते हैं, परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, जबकि असफलता मंजिल नहीं है, वो रास्ते में पड़ने वाला एक पड़ाव है। असफलता एक ऐसी जगह है जहां हमें रुकना नहीं है, टिकना नहीं है, ये मंजिल नहीं होती, ये रास्ते में आने वाली एक रुकावट या रंबल स्ट्रिप मात्र है। यानी असफलता से घबराना नहीं है, उसे मंजिल समझने की गलती मत कीजिएगा। आप कभी ना सोचिए कि अगर आप फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं, तो आप समाप्त हो गए हैं। जी नहीं, इसका अर्थ होता है कि आपको एक नए रास्ते को आजमाना है, आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ और ट्राई करना है। यानी आप जिस तरह से जो भी कुछ काम कर रहे थे उसमें फेल हो गए हैं, तो आपको पुनः दोबारा से फिर से एक नई शुरुआत करनी है, और इस बार इन असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ना है। यानी अब आपके पास पहले से ज्यादा ज्ञान है, और हां, धैर्य से काम लीजिएगा दोस्तों। विपरीत परिस्थितियों में हमारा धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूं वास्तु कृष्णा। दोस्तों, आज की कठिनाई आपके पूरे भविष्य का फैसला नहीं करती। यही वजह है कि निराशा के समय पर आज और हमेशा के बीच में फर्क करना बहुत जरूरी है। यानी जब असफलताएं, कठिनाई आए तो ये मंजिल नहीं, ये जीवन नहीं है दोस्तों। तो जो कठिनाई आज आपके सामने खड़ी है, ये जीवन नहीं है। आज की कठिनाई आपके पूरे भविष्य का फैसला नहीं करेगी दोस्तों, आपके भविष्य का फैसला करेंगे आप। इस कठिनाई के पार जाना होगा आपको। ये कठिनाई पारिवारिक, शारीरिक या

आध्यात्मिक भी हो सकती है और हाँ फाइनेंस यानी पैसे से संबंधित भी ये समस्या हो सकती है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, जब लोग हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं, जब हम खुद को असहाय निरर्थक या अजीब प्रकार के भाव में डूबा हुआ पाते हैं। निराशा ही किसी इंसान की सबसे बड़ी खराब परिस्थिति होती है, क्योंकि निराशा में इंसान जीने की इच्छा ही त्याग देता है, आगे बढ़ने की इच्छा ही त्याग देता है। निराश व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचता, वो अपने आप को असहाय मान बैठता है और निराश व्यक्ति सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जबकि ये एक बुरी माइंडसेट वाली बात है, ये एक गलत परिस्थिति नहीं है, बस हमारा माइंडसेट गलत हो गया है। निराशा जीवन में आएगी ही, कठिनाइयां तो आएंगी ही, हम उसको कैसे डील करते हैं सबसे जरूरी यही है। जितने भी लोगों ने बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं, जिन्हें आज हम किसी बड़े अच्छे मुकाम पर देखते हैं, उन्होंने कम परेशानियां नहीं झेली, उन्होंने कम दुख या तकलीफें नहीं झेले, उन्होंने अपने साथ सबसे बड़ी धरोहर को बनाए रखा, वो थी पॉजिटिव एटीट्यूड। निराशा को हमेशा उन्होंने मार दिया। निराशा इंसान को समाप्त कर देती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। निराशा से दूर रहिए। निराशा आएगी तो जरूर, पर आपको उसे जीतना होगा, उसे हराना होगा आपको। निराशा आपसे जीत नहीं सकती।

जिस चीज पर आपका नियंत्रण है अपनी ऊर्जा वहीं लगाइए। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। परिस्थिति हमेशा आपके हाथ में नहीं होगी, लेकिन प्रतिक्रिया अक्सर हमारे हाथ में होती है। जी हाँ, कठिन परेशानियां होंगी, पीड़ादायक समय गुजरेगा आपके जीवन का। हो सकता है कई बार परिस्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो, आप कुछ ना कर पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा कि आपको बार बार निराशाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद को अकेला भी पाएंगे और हाँ, दुख और दरिद्रता से घिरा हुआ भी पाएंगे। ये सब हो सकता है हमारे जीवन में, लेकिन एक चीज जो हमेशा हमारे पास होती है वो होती है प्रतिक्रिया। कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में एक्शन हमेशा होता है। समझदार लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को समझदारी के साथ अलग तरीके से करते हैं। तो अगर कोई खास किस्म की परेशानी आपके सामने आ गई है, इसका अर्थ यह है कि आप कुछ खास करना चाहते हैं इस जीवन में। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ खास करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए परिस्थितियां, कष्ट और पीड़ा आसान नहीं आएगी, कुछ अलग तरीके की आएगी। ऐसे में आपको सोच समझकर ही डिसीजन लेना होगा। आपको हर प्रतिक्रिया से पहले बहुत ज्यादा विचार विमर्श करना होगा। याद रखिए, यह परिस्थिति परमानेंट नहीं है, ये आई है आपको सिखाने, समझाने, मजबूत बनाने के लिए। कहते हैं कि एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट सोचकर लिया गया फैसला हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है।

जिन चीजों पर, जिन बातों पर, जिन समस्याओं पर हमारा कंट्रोल है, जिन परिस्थितियों पर हमारा कंट्रोल है, जो बात हमारे हाथ की है, हमें हमेशा उस पर ध्यान देना चाहिए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, मैं हूं वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो। कई बार हम उन चीजों में

हाथ डालने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमें लगता है कि हम परिस्थिति को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। परिस्थितियां कई बार विपरीत रहेंगी, हम शायद उन्हें कंट्रोल ना कर पाए। इसलिए हमें हर बात में अपना हाथ डालने की जरूरत नहीं है, हमें फोकस उन चीजों पर करना है जो हमारे हाथ में है। आपके हाथ में कुछ ना कुछ जरूर होता है, हमें अपनी उस मजबूत परिस्थिति को और बेहतर और मजबूत बनाना चाहिए। जो बातें जो कंट्रोल से बाहर हैं, जो परिस्थितियां, जो लोग, जो भी बात, जो भी सिस्टम हमारी जिंदगी में चलता है, अगर वो हमारे हाथ के बाहर है फिर हमें उसे छोड़ देना चाहिए। हमारे हाथ में जो है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, और जब हम उस मजबूत चीज पर ध्यान देंगे जिसमें हम पहले से ही परिपक्व है, मजबूत है, स्ट्रांग है, तो यकीन मानिए आपकी वो पॉजिटिविटी, आपकी वो मजबूत परिस्थिति जिसके आप मास्टर हैं, आपको आगे निकाल कर ले जाएगी। आप अपने खेल के माहिर बने, आप दूसरों के खेल में हाथ मत डालिए। जो इंसान अपने खेल का माहिर होता है वो कभी हार नहीं पाता। हो सकता है आपको बहुत सारी पटखनियां देनी ना आती हो, लेकिन एक धोबी पछाड़ जिसमें आप मास्टर हैं उसमें कोई आपको हरा नहीं सकता। तो आपको 1000 गुर नहीं सीखने, आपको एक मास्टर गुर आना चाहिए जिसमें आपको दुनिया में कोई पटकनी ना दे पाए। इसका मतलब सिर्फ यह है दोस्तों, जिस काम के आप मास्टर बन जाएंगे वहां कोई आपको डगमगा नहीं सकता।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से, और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: जय हिंद, मैं हूँ वास्तुराज कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। और आइए दोस्तों, अब समय हो चला है आज की एक खास प्रस्तुति का। स्मार्ट एनजीओ के तत्वाधान में मिलकर सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर यह खास प्रस्तुति।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक संकल्प है, हर घर तक बेहतर स्वास्थ्य की रोशनी पहुंचाने का, हर चेहरे पर मुस्कान लाने का। दोस्तों, हमारा ये विशेष कार्यक्रम समुदाय के बीच जाकर लोगों के जीवन से जुड़कर उनकी दिनचर्या, उनकी परेशानियों और उनके स्वास्थ्य से जुड़े अनुभवों को समझने का एक सच्चा प्रयास है। हम न केवल उन्हें स्वस्थ रहने के आसान और प्रभावी उपाय बता रहे हैं बल्कि उनके मन में उठ रहे सवालों और चिंताओं को भी ध्यान से सुन रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच जब हमने टीकाकरण पर लोगों से बातचीत की तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे, कभी संकोच, कभी डर, तो कभी जिज्ञासा। तब हमने इन सभी प्रश्नों को इकट्ठा किया और ये वादा किया कि हम उनके सभी प्रश्नों का जवाब विशेषज्ञों के माध्यम से जरूर उन तक पहुंचाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या पर जिस पर अगर अभी ध्यान न दिया जाए तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमसे सवाल पूछती रहेंगी। दोस्तों, आज का ये खास पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो बच्चों को होने वाले टीकाकरण को हल्के में लेते हैं या फिर इग्नोर करते हैं। और अगर स्वास्थ्य कर्मी घर तक पहुंचे तो कहते हैं कि हमारे बच्चे को टीके की जरूरत नहीं है। तो अगर आज आपके मन में भी इम्यूनाइजेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं SGPGI यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य और आपसे बातचीत कर रही हैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च यानी कि CFAR की प्रोग्राम लीड रंजना द्विवेदी जी। तो आइए इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर टीकाकरण से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त करें, अपने संदेह दूर करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल जीवन की ओर मजबूत कदम बढ़ाएं।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर, और टीकाकरण ही नहीं, टीकाकरण क्यों नहीं कराते हैं लोग, लोगों को में क्यों हिचकिचाहट होती है टीकाकरण को लेके। बहुत सारे लोगों को कुछ तरह के संदेह होते हैं, कुछ उनकी अपनी मिथ्या धारणाएं होती हैं, और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में है। तो नमस्कार मैम।
3: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।
2: मैम, टीकाकरण बहुत जरूरी है, सबको पता है
3: जी,
2: लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं। जानते हैं बच्चे की जान बचेगी, फिर भी हिचकिचाते क्यों?
3: देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है कि इसमें हिचकिचाहट ही सिर्फ नहीं है, कंप्लीट रिफ्यूजल भी होता है कि हम करवाएंगे ही नहीं, अच्छा सोचेंगे, अच्छा थोड़े दिन बाद करवा लेंगे। तो इसके लिए तो हम जब देखते हैं तो पूरा एक ये स्पेक्ट्रम है, कंप्लीट रिफ्यूजल ना से और सोचते हैं से लेकर अच्छा करवा लेते हैं तक। तो हेजिटेंसी जो है, मतलब हिचकिचाहट जो है टीकाकरण को लेके, ये हर एक के मन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो भी कमजोर है, कुछ दिन बाद करवा लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे लेके जाएंगे बच्चे को, अगर बुखार हुआ, कोई और चीज हो गई तो। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारी के लिए हम टीका लगवा रहे हैं वो बीमारी तो बहुत दूर की बात है, इसलिए लोगों को वो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं समझ में आता है। पर जो फीवर अभी होगा, बुखार अभी होगा, जो बच्चा रोएगा, वो अभी तुरंत उनको दिख रहा है, तो वो तुरंत की वजह से ज्यादा हिचकिचाहट होती है।
2: तो इसी पे मैं पूछना चाहूंगी मैम, जैसे अगर आपके पास तो रोज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्या कुछ लोग सिर्फ पूछने के लिए आते हैं कि हम बच्चों का टीकाकरण कराएं या ना कराएं? संदेह रहता है उन्हें, मतलब इतना समझ के पढ़ लिख के भी आते हैं फिर भी उनके मन में संदेह रहता है कि कराएं या ना करें, तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास?
3: बिल्कुल आते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो अब गूगल चाचा से भी समझ के आता है और सब जगह से पढ़ के आता है, तो उसकी सारी पूछताछ ज्यादा होती है। जो थोड़ा हमारे गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, वो ANM के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी, तो उनसे लगातार मिलने की वजह से थोड़ा बहुत संदेह रहता है, पर उनको हेल्थ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है इन लोगों से, तो इसलिए उनकी शंकाएं जरा सा कम होती हैं। बीच तबके के लोग जो हैं, न बहुत ज्यादा अमीर न बहुत ज्यादा गरीब, उनमें डाउट तो रहता है पर उनमें एक्सेप्टेंस बेटर होता है।
2: क्यों रहता है मैम? एक्चुअल में देख अनुभव होता है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनको टीकाकरण हुआ, बुखार आ गया, मतलब कुछ उनका अपने अनुभव की वजह से ऐसा होता है या इन जनरल ऐसा होता है जिसका पहला टीकाकरण है वो भी इस तरह के होते हैं?
3: देखिए हमारी सोसाइटी जो है ना वो कहानियां बहुत बनाती है।
2: हाँ,
3: तो एक बच्चे को अगर फीवर आया, उसने पड़ोस में बताया भाई मेरे बच्चे को टीकाकरण के बाद फीवर आ गया, वो तीसरे को बताता है, तीसरा बताता है अरे उसको 105 डिग्री आ गया, पांचवें चौथे तक सातवें तक पहुंचते पहुंचते फीवर के साथ में झटका भी आने लगता है, झटके के साथ मुंह से झाग भी निकलने लगता है। तो जब तक वो उस औरत के पास पहुंचता है जो अपने बच्चे को पहली बार लेके जाने वाली है, उसका इतना बतंगड़ बन चुका होता है उस बात का कि वो हिचकिचाती है, अब डरती है कि मैं ना जाऊं, मैं ना लगवाऊं, अरे उसके बच्चे के साथ ये हो गया था तो मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो एम्पलीफाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो बढ़ चढ़ के बताते बताते कई लोग जो लगाने भी जा रहे होते थे उनके कान तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बढ़ गया होता है कि वो मना करने लगते हैं कि नहीं रहने दो भैया।
2: तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, नहीं लगाते लोग, किस संदेह के कारण नहीं लगाया, हिचकिचाहट के, और अल्टीमेटली बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मतलब उनको इसको दूर करने के लिए किस

0: को तो टीकाकरण होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है। टीकाकरण ना होने से उनके शरीर को इसका एहसास ही नहीं होता है कि वो बीड़ी बीमारियों से कैसे लड़े। तो हमारे पास जब टीकाकरण है तो टीकाकरण करने से आप समझ लो शरीर को ये अभ्यास होता है कि ये बीमारी आए तो हमें कैसे लड़ना है, और जब वो बीमारी आती है तो कुपोषित बच्चे का शरीर भी तैयार होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो जान माल सब बच जाता है।
1: बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि जब टीकाकरण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है। अगर बच्चा कमजोर है, कुपोषित है, लेकिन टीकाकरण उसको वो ताकत देता है कि अगर कोई बीमारी उसको घेरती है तो वो उससे लड़ सकता है। एक बड़ी चीज ये भी है मैम कि बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, पढ़े लिखे भी बहुत नहीं होते हैं, उनको उन तक शायद हमारी पहुंच भी नहीं हो पाती है और वो नहीं करवा पाते किसी कारण से टीकाकरण। तो अगर किसी का मतलब एक टीका छूटा पूरा हमारा, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल है पूरा, हमारा एक पूरा एक नियम है कि ये टीका लगेगा फिर वो टीका, अगर ऐसा कुछ होता तो उनके लिए क्या है कि जब जागे तब सवेरा, या मतलब किस तरह से वो अपने टीकाकरण को सुनिश्चित करवा पाए?
0: जब आपने दिहाड़ी की बात करी है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या शंकाएं रहती है या क्या प्रॉब्लम होती है। जब ये आप समझ जाओगे तो ही उसको दूर कर पाओगे। दिहाड़ी मजदूर का एक सेंटर पे बच्चे को लेके जाना, मैंने एक दिन की रोजी रोटी गई, आने जाने का खर्चा अलग से लगा, क्यू में खड़े होके टीकाकरण कराने का समय और गया, बच्चे को अगर फीवर आया डॉक्टर को दिखाना पड़ा, दवा करनी पड़ी तो उसका खर्चा और गया, अगर उसको घर पे एक दिन और रुकना पड़ा तो एक दिन और की गई। और ये मत समझना कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं गया तो किसी और को वो ड्यूटी नहीं दे देंगे और उसको बिठा नहीं देंगे, तो उसके लिए ये एक रिस्की बात हो जाती है, इसलिए वो डरता है। अगर वो इन सब शंकाओं से पार उतरे तभी तो वो बच्चे को लेके जाएगा ना।
1: बिल्कुल।
0: तो उसको सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत है कि अगर छूटा है तो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा है तब भी आप टीकाकरण पूरा करो।
1: तो बच्चे की सेहत के लिए, उसके भविष्य के लिए टीकाकरण जरूरी है। दिहाड़ी आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, सभी मतलब श्रोताओं से मेरा कहना है कि बच्चे, अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तब आप दिहाड़ी पे भी जा पाओगे, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो आप दिहाड़ी पे भी नहीं जा पाओगे, और टीकाकरण स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है, इसलिए सबको टीकाकरण करना चाहिए। मैम एक और चीज देखी गई है, बच्चा तो छोटा होता है, माँ बाप होते हैं, क्लोजली माँ बाप होते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना कि बच्चे को टीकाकरण, क्योंकि बहुत सा मतलब समाज में हम देखते हैं दादी नानी सबके अपने अनुभव होते हैं, हमने 10 बच्चे पैदा किए, हमारे बच्चे तो बिना टीकाकरण के अच्छे हैं, इस पे क्या आप सलाह देना चाहेंगी लोगों को, क्योंकि मतलब स्पेशली घर के बड़े लोगों को या जो भी उनको सपोर्ट करते हैं।
0: रंजना जी, ऐसा होता है कि माँ जो है वो अथॉरिटी नहीं होती है घर में, तो दो तरह के परिवार होते हैं, एक जैसे हमारे आपके, हम हमारे पति और हमारे दो बच्चे, इस तरह का परिवार होता है, एक होता है भरा पूरा परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं, तो वो एक सम्मिलित एक सब लोगों का एक डिसीजन होता है, उसमें सिर्फ माँ बाप का नहीं होता है। तो ऐसे में माँ क्योंकि हेल्थ वर्कर के साथ बार बार बार बार उठती बैठती है, हमारी आंगनवाड़ी दीदियां सब घर जाती हैं, तो उन बहनों का इन्फ्लुएंस माँ पे होता है, पर फाइनल अथॉरिटी अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो वाले, तो फादर की होती है, पर माँ समझा बुझा सकती है, कह सकती है। और अगर सम्मिलित परिवार है तो फिर तो सास का बहुत बोलबाला रहता है, सास ससुर अगर कह दे कि नहीं कराना है तो माँ बाप चाहते हुए भी नहीं कराते। तो आपने जैसे कहा कि सास कह देगी हमने भी तो बच्चे पाले थे, कौन सा उनका टीका करवाया था, सब अच्छे हैं, कौन सा तुम्हारा बेटा जो है कहाँ से वो आ गया है कि उसको जो है टीकाकरण नहीं करवाए, तो कुछ नहीं, तुम काम नहीं करना चाहती हो, दिन भर वहां बैठी रहोगी गप्पे मारोगी इसलिए तुम जाना चाहती हो। पर हाँ, आज के जमाने में जैसे गूंज से या कहीं से भी अवेयरनेस जैसे हम फैला रहे हैं, तो कुछ समझदार सासें होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ बीमारियां तो है तो लगवा ही लो बहू, भेज भी देती हैं। तो दो तरह के थॉट्स होते हैं, और जब ये सम्मिलित डिसीजन की बात आती है ना, तो वहाँ थोड़ी सी हिचक बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो फास्टर होता है फटाक से कि हमें तो लगवाना है, पर पीछे से कौन देखेगा अगर बीमार हो, क्योंकि हम तो हमारे दो में

0: तो हम दोनों वर्किंग है, काम कर रहे होते हैं, तो काम पे निकल जाएंगे, पीछे से बच्चे को कौन देखेगा, या तो बड़ा बच्चा देखेगा उस छोटे बच्चे को, तो थोड़ी दिक्कत तो उसमें आ जाती है। और सम्मिलित परिवार में तो दादा दादी चाचा चाची सब मिलके बच्चे पाल देते हैं, तो उसमें एक बार अगर हाँ हो जाए तो फिर बच्चे के साथ कोई और दिक्कत नहीं आती है, मामला बहुत स्मूथ हो जाता है।
1: धन्यवाद मैम। एक डर लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी होता है किन्हीं कारणों से किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और कोविड के बाद बहुत सारी अफवाहें फैली टीकाकरण के बाद लोगों की डेथ, और थोड़ा सा हमने देखा है कि हमारा जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, एक दोबारा से वो उस विश्वास को जगाने में बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि टीके कितना सुरक्षित हैं और इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
0: देखिए, वो जो कोविड वाली मेमोरी है ना, वो तो इंसान के जहन में बैठ गई है। कितनों को ही हमने मरते देखा, कितनों को ही इतना परेशान दौड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो जो मेमोरी है ना, वो यादें वो दिमाग में बस जाती हैं। ऊपर से जब कोई भी नया वैक्सीन आता है, जैसे कि हमने 2016 में IPV या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोनिया का वैक्सीन, ये सब लॉन्च किए, तो कोई नई चीज आती है ना, तो इंसान की दुविधा बढ़ती है, हिचकिचाहट बढ़ती है। और कोविड के मौतों के बाद से तो लोगों के दिमाग में डर तो बैठ ही गया था। पर ये जानना पड़ेगा कि हमारी ये जिन वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, वो तो कोविड से पहले भी थी और आज भी हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर सुरक्षित नहीं होती वो वैक्सीन, तो इतने सालों से चली आ रही है, हम देखते कि वो सुरक्षित नहीं है, पर ऐसा तो नहीं हुआ, कोविड से पहले भी थी और आज भी है। और एक बच्चे का अगर देखो, उस वैक्सीन को हम एक बच्चे को तो नहीं लगाते, हम तो वही वैक्सीन पूरे इंडिया में वही बैच हजारों बच्चों को लगता है, तो एक बच्चे की अगर मौत होती है तो वो इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है कि उस बच्चे की मौत क्यों ही, ऐसा तो नहीं हुआ कि इससे बहुत सारी मौतें हो गई, तब वो इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है। अदरवाइज अगर सिंपली एक क्लस्टर में एक ही बच्चे की मौत हुई, तो ये जांच लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है उसमें कोई बड़ी बीमारी थी पहले से ही और उसको टीका लग गया, तो कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की मौत हुई हो। और ऐसी बातें ना, अफवाहें ऐसे फैलती हैं पागलों की तरह कि क्या बताएं हम, उससे लोग और डर जाते हैं। पर क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ कि हमारे टीके कोविड से पहले भी थे, आज भी हैं, तो वो बहुत ही सुरक्षित टीके हैं, तभी वो पब्लिक में अभी तक विश्वास के साथ दिए जा रहे हैं।
1: थैंक यू मैम। और धीरे धीरे हम लोग टीकों में बदलाव भी कर रहे हैं, बहुत सारे टीके लगने की जगह कई टीकों का एक वैक्सीन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जो होता है समुदाय में, उसका असर होता है, वो प्रभावित करता है टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रेरित करने या ना प्रेरित करने में?
0: बिल्कुल करता है। जितनी शिक्षा उतना डाउट। जो देखना ज्यादा शिक्षित होते हैं ना रंजना, वो आके पूछेंगे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। हमारा काम है उन्हें रीअश्योर करना। जो कम शिक्षित है, मैंने जैसे कहा, उन्हें आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी ऑलरेडी प्रिपेयर करके भेजती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको रीअश्योर करें, थोड़े बहुत उनके सवालों के जो जवाब है, शंकाओं के जवाब दें। और कई बार ऐसा होता है कि पहली बारी में वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अगल बगल भी पूछते हैं, अपने नेबर्स को पूछ लेते हैं, दूसरे जिस बच्चे के टीका लगा होता है उसकी माँ से भी बातचीत कर लेते हैं, तो ये जो थोड़ा सबसे बतिया लेते हैं ना, तब लगता है कि इनको अब लग जाना चाहिए बच्चे को। तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा सा प्रयास करके रीअश्योर करना पड़ता है।
1: मैम, एक चीज है कि मुझे टीके की जानकारी है और एक चीज है कि मुझे टीके की समझ है, दोनों में अंतर है थोड़ा
0: सा। बहुत बड़ा अंतर है रंजना। जानकारी है वो तो चारों तरफ से उनको आते रहते हैं कि मेरे बच्चे को पोलियो का टीका लगना है, ये हुआ जानकारी, मेरे बच्चे को टीकाकरण होना है, किस उम्र पे पोलियो लगना है, कितने बूंद पिलाने हैं, उसको पिलाने के बाद बच्चे के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसकी समझ हमें होनी चाहिए, बुखार तो नहीं आएगा, कोई और परेशानी तो नहीं होगी, मेरा बच्चा रोएगा तो नहीं, ये होती है जानकारी कि अगर ऐसा होता है मुझे क्या करना है, किसके पास जाना है, दवा क्या करनी होगी, तो ये होती है जानकारी। ये तो ठीक है, समझ है कि होना है टीकाकरण, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जब उनको जानकारी पूरी समझदारी के साथ समझाई जाए, तब उनके जहन में ये होता है कि हाँ टीकाकरण होना है।
1: इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, आप डॉक्टर हैं, आपके पास जब लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझा ले जाती हैं, क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से खुद जानती हैं और आपको पता है कि किसको कैसे समझाना है। लेकिन समुदाय स्तर पे जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो जब काउंसलिंग करते हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ब्लंट सवाल आते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहला उन्हीं को झेलना है। माँ को तैयार भी उनको करना है, माँ को हिचकिचाहट है तो वो भी उन्हीं को दूर करनी है, और उनका अपने संदेश भी बहुत सही होने चाहिए जिससे वो कन्विंस हो सके और आप तक आप मतलब टीका लगवाने के लिए आ सके। तो उनके लिए कोई मतलब कुछ टिप्स देंगी कि किस तरह से वो लोगों से बात करें, वो मतलब स्पष्ट भी हो संदेश उनका और वो पेरेंट्स को भी अहमियत उसकी समझ में आए। होता क्या है ना, मतलब मेरे घर वाले अगर मुझे समझा रहे हैं तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं समझ में आती जितना आप मुझे समझाएंगे। वही हाल आशा दीदी और हमारी आंगनवाड़ी दीदी और एनम की भी होती है, क्योंकि वो रोज हमसे मिलती हैं। तो उनके लिए मैं जानना चाहूंगी, मतलब उनको आपकी तरफ से क्या चीजें उनको इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए जिससे लोग टीकाकरण के लिए तैयार हों।
0: आशा दीदी लोग जब घर घर जाती है ना, दस्तक एक चलता है कि वो आपके बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं, नया बच्चा हुआ उनके घर में जाके उनको उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, अरे बिटिया हुई है वेरी नाइस, लड़का हुआ है बहुत बढ़िया। तो वो एक आशा दीदी के साथ ऑलरेडी विलेजेस में, गाँव में, घरों में माओ का, दादियों का, चाचियों का, सबका एक अलग सा रिश्ता बना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई मौत हो गई या कहीं कोई बीमारी हो गई तो वो लोग हिचकिचाते हैं उसमें भी। आशा दीदी इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन उस समय कि, और पहली बार में वो नहीं कर पाएगी, उसको बार बार बार बार जाना पड़ेगा। तो पहले ही समय की वो रिएश्योर कर देगी और हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना पड़ेगा उसको। पहली बार जाके कि कैसे हो कैसे नहीं हो, बच्चे के बारे में खबर लेना, अच्छा ये हो गया है, दूसरी बार में जाके तुम्हारे बच्चे को ऐसा हुआ था ना, अब कैसा है, तो तीसरी बार में जाके इसका तो एक टीकाकरण है, तुमने कितने बच्चे हैं, तुमने इनको लगाया है, ये किया है, तो फिर वो बाकी घर के बच्चों के लिए भी बात करना। ये शायद चौथी पांचवी बार में ऐसा होता है कि आशा दीदी ये कम्युनिकेट कर पाती हैं कि आप लोग जो हैं अपने बच्चे का टीकाकरण कर लीजिए। तो बच्चे की खबर लेने से शुरू करके बच्चे के बारे में बताना और बार बार जाके माँ को रीअश्योर करना और टीके के बारे में बताना, अच्छा फला को और अगल बगल के जो लोगों को टीका लग रहा है उनके बारे में भी जानकारी देना, अरे फला मौसी के बच्चे को टीका लगा था देखिए कितना बढ़िया तंदुरुस्त है, और फला मौसी के नहीं लगाया था उनको तो दस्त आ गए भाई। तो इस तरह से आप दूसरे लोगों की कहानियां बताकर भी उनको रीअश्योर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, अच्छी चीज है। आशा दीदी लोग जो भी हमारे प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जब उनके पारिवारिक रिश्ते भी बन जाते हैं सभी जितने भी उनके लाभार्थी होते हैं उनके साथ, और अलग अलग उदाहरण देके वो दूसरों को, मतलब एक परिवार अगर तैयार हुआ है तो उनके लिए एक उदाहरण होता है कि वो बाकी परिवारों के लिए करते हैं। इसमें क्या जो समुदाय का वृहद, मतलब इनकी तो एक तरह से कहते हैं ना तुम्हारी तो ड्यूटी है तो तुम टीका कर रही हो, और वो करती भी है, लेकिन और भी लोग हैं जो इनको सहयोग कर सकते हैं। आपको लगता है समुदाय में टीकाकरण के विषय में भी जैसे एक तो हम लोग जिस तरह से रेडियो पे अभी बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के साधन होते हैं, गांव में और भी लोग होते हैं जो जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आप मतलब कुछ बताना चाहेंगे इस पे कि कैसे लोगों से वो लोग सहयोग ले सकती है अगर कोई परिवार नहीं तैयार है, क्योंकि हिचकिचाहट दूर करना बहुत आसान चीज नहीं होती, वो भी एक बच्चे के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर नहीं मेरे से तैयार हो रहा तो मैं किसकी मदद लूं।
0: रंजना, जब हम लोगों ने न्यूमोकोकल वैक्सीन की लॉन्च करी थी तो ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी, नए वैक्सीन को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जिन लोगों से हमने गांव में लिया वो थे गांव के प्रधान। प्रधान साहब को सब लोग, अगर प्रधान ने कह दिया तो ठीक ही होगा, ये रवैया रहता है। तो हमारे साथ ये बहुत मदद हुई कि कई गांवों में प्रधानों ने हमारी बड़ी मदद की कि उन्होंने कहा कि नहीं ये वैक्सीन ठीक है, आप सबको जाके टीकाकरण करवाना चाहिए। कई जगह हमें मस्जिद जाना पड़ा, वहां के मौलानाओं से बात करनी पड़ी, कई जगह स्कूलों में जाना पड़ा, वहां के प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी। तो ये कई लोग होते हैं जो पीपल ऑफ अथॉरिटी होते हैं उस जगह पर, इन लोगों से बात करने से कई बार हमारी समस्याओं का समाधान होता है, लोग आगे आते हैं और ये मानते हैं कि जब ये इन्होंने कह दिया तो सही ही होगा और हम तब टीकाकरण आगे स्मूथली बढ़ता है।
1: तो मैम अच्छी चीज है कि अगर प्रधान हैं हमारे, बाकी जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनको सहयोग करेंगे, तो हम जो हिचकिचाहट होती है इनको समझाने में, समझा के टीकाकरण

0: करवाने में उसमें मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कुछ और चीजें भी, कुछ और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो हमारे एक होते ना कहते एंट्री पॉइंट होता है परिवार का विश्वास जीतने के लिए? या दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि क्या टीकाकरण के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स को नवजात के संबंध में ध्यान रखनी चाहिए?
1: दूसरे सवाल का पहले जवाब दूं मैं आपका कि नवजात जो होता है ना उसका पहला टीकाकरण माँ का दूध होता है, क्योंकि माँ के शरीर से कहते हैं ना माँ का दूध पिया हो तो सामने आ जा। तो माँ का दूध जो होता है उसमें से माँ की इम्यूनिटी बच्चे में ट्रांसफर होती है। कई विटामिन्स हैं, कई इम्यूनोग्लोबुलिन जो रक्षात्मक तंत्र होते हैं वो चीजें बच्चे में जाती हैं। सो जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया है वो बच्चों के साथ परेशानियां ज्यादा होती हैं। जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया है तो कम से कम 6 महीने तक अगर उन्होंने माँ का दूध पिया होता है तो उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। और साथ साथ हम जब टीकाकरण कर देते हैं तो यही बच्चे हैं जो कम बीमार पड़ते हैं। तो माँ का दूध तो पहला टीकाकरण हुआ, उसके बाद हमने एज डॉक्टर्स टीकाकरण करना शुरू किया। पहली रक्षात्मक शक्ति माँ होती है। अब आई बात की टीकाकरण कैसे और कहाँ से और एंट्री पॉइंट कहाँ होता है। देखिए एक एंट्री पॉइंट तो होता है ICDS वाला सेंटर। जब माए राशन लेने जाती है ना वहाँ पर दूसरी माओ से बातचीत होती है, तो वहाँ एक संगोष्ठी टाइप की हो गई कि एक ने दूसरे से कहा अरे हम तो उस दिन गए थे फला दिन तो वो दीदी मिली थी, बहुत अच्छे से हमारा टीकाकरण हो गया बच्चे का। दूसरी बोलेगी अरे मैं तो देर हो गया, मैं तो लगवाया नहीं, अरे पोलियो का टीका छूट गया, रोटा वायरस का टीका छूट गया, बच्चे को बड़े दस्त हो रहे हैं। तो वो माँ की समझदारी पे है कि कौन सा मैसेज वो उसमें से लेती है कि टीकाकरण हुआ तो हमारा बच्चा स्वस्थ है। और इंसेंटिव क्या रहता है कि हमें राशन लेना है, जाती इसलिए है कि हमें राशन लेने जाना है। और वहां जाके उसका दूसरे लोगों के साथ एंगेजमेंट होता है, दूसरे लोगों के साथ बातचीत होती है और फाइनली ये बातचीत जो है उसको एक बिहेवियरल चेंज कराती है। तो उसके बिहेवियर में ये चेंज होता है कि हाँ हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। तो वहाँ दूसरों से जब बातचीत करती है जो उसके मन में शंकाएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसलिए ये एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर माँ ये हाँ या ना सोचती है कि हम टीकाकरण कराएं या ना कराएं, गई वो राशन के लिए होती है। फिर जो हमारे VHNDs होते हैं उसमें भी यही होता है कि पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है, पर कई बार ये भी उसमें बातें होती हैं कि फला के बच्चे को लगवाया था देखो और फला ने नहीं लगवाया देखो, आशा दीदी ने बहुत डांट लगाई कि समय पे टीकाकरण नहीं हुआ। तो ये जो डिलेज करते हैं, मिस करते हैं टीकाकरण, इसके बारे में भी उनको ज्ञान मिलता है कि नहीं करना चाहिए हमें। और आउटराइट जिनमें रिफ्यूजल होता है जो कि बहुत कम होते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, वो वाले बहुत डिफिकल्ट केस होते हैं। वरना थोड़ा आप अगर रिएश्योर करो, समझाओ, उनके साथ एंगेज करो तो बहुत समझदार है माताएं, क्योंकि हर माँ को चाहिए कि हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देना है, माँ तो माँ ही होती है।
0: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं कोई पेरेंट्स को समझाने में तो ये प्लेटफॉर्म्स आप आंगनवाड़ी केंद्र उनको ले जा सकती हैं, VHND के सेशन में उनको ले जा सकती हैं, या आप किसी ऐसे लाभार्थी के घर भी ले जा सकती हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराया है और उन्होंने अगर टीकाकरण के बाद बुखार आया है तो उसको कैसे मैनेज किया वो समझने के लिए भी हो सकता है। या आप छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना, वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों को मिलती है वो भी दे सकती हैं। बहुत अच्छी मैम, एक और चीज में मतलब अब हम अंत में आ रहे हैं अपने, अगर इस व्यवहारिक यात्रा को समझे हम तो ये क्या यह कहना सही होगा कि अधिकांश परिवार पूरी तरह इनकार करने के बजाय हिचकिचाहट से स्वीकृति की ओर आगे बढ़ते हैं? यह यात्रा आमतौर पर कैसी दिखती है, किस बिंदु पर डर भरोसे में बदलना शुरू होता है?
1: बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। देखिए इंसान का जो व्यवहार होता है ना वो कई चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे कि इन माओं में होता है कि पहले डरते डराते जाती हैं, उसके बाद एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है कि हम सोच रहे हैं। तो जितनी बार हमारा या आंगनवाड़ी दीदी का या किसी हेल्थ वर्कर का उनसे कांटेक्ट बनता है तो डर के बाद सोच रहे हैं के बाद एक कॉन्फिडेंट एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ लगवाएंगे। उस दौरान अगर उनको आप बार बार बार बार रिएश्योर करो, मतलब डर जो है ना उसको आउट नंबर करना पड़ेगा आपको किससे ना, बार बार रिएश्योर करके कि हाँ लगवाना है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि 3-4 बार ये सब एड्रेस करने के बाद वो डर से लगवाएंगे तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद अगर से

0: इफ एक्सपीरियंस हुआ तो अगली बार जरूर आएंगे टीके के लिए। तो आपको जो है ये देखना है कि जो सोर्स उनको रीअश्योर कर रहा है, जो उनको बता रहा है, जो हेल्थ वर्कर बात कर रहा है, वो ट्रस्टेड हो। सो अगर बुखार में कोई भी अनसर्टेनिटी रहे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, वो बदल जाए कि उसमें नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, हम टीकाकरण करेंगे। और सिर्फ टीकाकरण नहीं करेंगे, उसके आगे भी कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम मौजूद हैं, हम रहेंगे, आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो। तो ये रिअश्योरेंस जब मिलता है कि पहले टीकाकरण में और उसके बाद तक हमारे साथ ही हेल्थ वर्कर हैं, तब वो डर धीरे धीरे चला जाता है। और एक बार टीकाकरण हुआ और सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बाद तो दोबारा तो आएगा ही आएगा।
1: तो हमें टीकाकरण करने वाले को भी भरोसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल टीके सुरक्षित हैं और बच्चे को कुछ नहीं होगा, और टीका करवाने वाले माँ बाप को भी पूरा विश्वास, क्योंकि जब विश्वास करने लगते हैं हम चीजों पे तो हमारा डर दूर होना शुरू होता है और फिर वो हमारे व्यवहार में आ जाता है और तभी वो हमें फायदेमंद भी होता है। इसी के साथ मैम हम अपने पॉडकास्ट के अंत में हैं, फिर से एक बार समराइज करते हैं इस चीज को, और अगर संक्षेप में कहना हो तो इन समुदायों में टीकाकरण को लेकर हिचकिचाहट वास्तव में किस बारे में, हम रिकैप करेंगे मैम, है ना। सीधे सीधे मैं पूछना चाहूंगी कि हिचकिचाहट किस चीज को लेकर होती है, स्वीकृति बढ़ाने में सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, और तीसरी चीज जो लोग हमारे सुन रहे हैं उन परिवारों के बारे में क्या समझना चाहिए, वो क्यों हिचकिचाते हैं। मतलब ये मैं डॉक्टर्स के लिए भी पूछ रही हूँ कि जब आता है कोई पेरेंट तो उसको एक होता है ना, मेरी सुन लोगे आप तब मैं आपकी सुनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर का जब सब कुछ बाहर आ जाएगा तभी शायद आप जो मुझे ज्ञान देंगी वो अंदर जाएगा। तो तीन चीजें हैं मैम, हिचकिचाहट जो होती है वो वास्तव में किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, और तीसरी चीज हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो टीकाकरण दे रहा है उसका क्या व्यवहार होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही आपने पूछा, उत्तर भी आपने शायद बता ही दिया होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि डर एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से टीका नहीं लगवाते। डेली वेजेस में इनकम का लॉस होता है इसलिए कई बार नहीं बताते हैं। पिछले एपिसोड में कहीं उनको कोई एक गलत एक्सपीरियंस हो गया होगा, या ये डर, मैंने सबसे पहले बोला है डर कि मेरे बच्चे को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है जो रोकती है, हिचकिचाहट जिसकी वजह से होती है। तो एक चीज जो डिफरेंस ला सकती है वो है जैसा आपने कहा कि उनकी बात को सुनना। उनकी बात को सुनना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो अपने डर को जब बाहर निकालेंगे तभी हम समाधान बता पाएंगे। उनकी डर को सुनना और उसके बाद देखना कि कहाँ क्या हो सकता है, उसको आजमाना, उनको देखना होता है कि हम आजमा के तो देखें और उसके बाद तब उसको मानना। ये एक पूरा सर्कल होता है जिसके थ्रू वो माँ बाप जाते हैं। तो जो भी हेल्थ वर्कर उनके साथ होता है उसको होम विजिट पे उनकी बातों को सुनना, और वैक्सीन के लगने पर वैक्सीन के बाद भी उपस्थित रहना, और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन से बुखार आएगा ये पहले से एक्सप्लेन करना। जब पहले से इंसान को पता होता है ना तो वो इतना नहीं डरता, लेकिन जब उसको कुछ पता ही नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो ज्यादा डरता है। मतलब आप सोचो आपको कल ऑफिस जाना है तो आप ठीक है कल ऑफिस जाना है, ये करना है और कल ऑफिस जाना है। जब आपको पता ही नहीं है कल क्या लेके आएगा, कोविड टाइम्स में कितना अनसर्टेनिटी हुआ था, कितना डर मन में बैठ गया था कि कल हो ना हो, तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। पहले ही उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ इस टीकाकरण से बुखार आ सकता है, इस टीकाकरण की वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है, ऐसे में आप हमारे पास आइए, या ऐसे में ये दवा हम आपको दे रहे हैं इसे खिलाइएगा। तो वो जब रिएश्योर हो जाता है ना तब वो पेरेंट कभी नहीं हिचकिचाएगा। एक एक्सपीरियंस अच्छा तो सब अच्छा, पहल अच्छी हो जाए ना तो सब अच्छा हो जाता है।
1: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, पहल तो करिए अच्छा ही होगा। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी, पॉडकास्ट से पहले मैडम से मेरी बात हो रही थी और मैम ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि टीकाकरण जो है ना वो सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, उस बच्चे का अधिकार भी है। तो हमें हर बच्चे को उसका अधिकार देना है, सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे का पूरा पूरा टीकाकरण हो।
0: डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं।
1: मैम, अंत में मैं चाहूंगी आप एक संदेश के साथ हम इस पॉडकास्ट को खत्म करना चाहेंगे, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए।

0: सबके लिए एक संदेश।
1: अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सब आगे आएं, माता पिता अपने बच्चे को टीकाकरण करवाएं, क्योंकि स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भविष्य। तो अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को स्वस्थ देखना चाहते हैं, टीकाकरण जरूर करवाएं।
0: बिल्कुल। तो धन्यवाद मैम, आपने इतने अच्छे से हमें बताया, इतनी सरल भाषा में सहज तरीके से हमें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मुझे पूरा विश्वास है कि पेरेंट्स आगे आएंगे, सभी अपने बच्चों का टीकाकरण कराएंगे, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
2: तो दोस्तों, उम्मीद है कि सेहत सही लाभ कई का ये प्रयास आपके जीवन में जागरूकता और विश्वास की एक नई किरण लेकर आया होगा। याद रखिए, सही जानकारी ही बेहतर स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। टीकाकरण न केवल आपको बल्कि आपके परिवार और पूरे समाज को सुरक्षित रखने का एक मजबूत कवच है। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, क्योंकि जब सेहत सही होती है तो लाभ सच में कई होते हैं। नमस्कार।
3: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

ये एनटीडी है। तो अगर आप लोग यहाँ टॉप में लेफ्ट में देखेंगे तो ये इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहां पे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो गड़बड़ आइटम होता है, जहां पे इंफेक्शन होता है उसके आइटम वहां से गुजरते हैं, वहीं पे जाके ये वर्म रहता है। राइट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैनिफेस्टेशन

है, यानी कि दिखाई कैसे पड़ता है शरीर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, बट वी विल बी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जिनमें सिम्टम आते हैं उनमें दो तरह की कंडीशन होती है, वन इज एक्यूट यानी कि छोटे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए, क्रॉनिक यानी कि बहुत देर बाद सिम्टम आए और जो देर तक टिकेंगे। एक्यूट में क्या होता है, देर इज फीवर और फीवर के बाद लिम्फेटिक चैनल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है बहुत तेज, और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो क्रॉनिक है उसमें लिम्फेडेमा एक होता है, लिम्फेडेमा एसेंशियली कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक चैनल्स में जहां ये एडल्ट पैरासाइट रहते हैं वहां पे लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज होता है और थोड़ा सा खुल जाता है। चैनल्स खुलने से क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे सूजन पैदा करता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग। और अगर ये हमारा पुरुषों में जो जननांग होते हैं, स्क्रोटल एरिया होता है, वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये महिलाओं में ब्रेस्ट में भी हो सकता है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वी कॉल इट एलिफेंटियासिस। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और होती है, जिन लोगों के किडनी के लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए मुझे बीमारी है और मॉस्किटो इज बाइटिंग मी, और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा, तब ये डिजीज उसको हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होती है। अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट पे जो पिक्चर है, इसमें जो लेफ्ट की दो पिक्चर है, ये लिम्फोडिमा है। कितना स्टिग्मा इस व्यक्ति को झेलना पड़ता होगा, जस्ट इमेजिन। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है, ये रीजन है आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा इस चीज को ध्यान से समझ लें कि फाइलेरिया की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है, और जिसको हो जाती है इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। पर हमने आपको बता दिया है कि ये मच्छरों से फैलती है, तो इसीलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो बच्चा माइक्रो फाइलेरिया बेबी उसके अंडर जाता है शरीर में, और वो एडल्ट बन जाता है, मेल एंड फीमेल। और वो मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं, दे मैरी एंड दे प्रोड्यूस बेबीज। वो जो बेबीज होते हैं उनको हम माइक्रो फाइलेरिया कहते हैं। दिन के समय अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ये माइक्रो फाइलेरिया उस सैंपल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लंग्स के आसपास का सिस्टम है, वहां छुपा रहता है। ये केवल शाम के समय 8 बजे के बाद, मोस्टली मिडनाइट में, हमारे पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इसीलिए कुछ लोग गलती से ये कर लेते हैं कि दिन में गए, ब्लड टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, WHO का सिस्टम है, उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग शाम को ब्लड टेस्ट कराएं, और इसको कहा जाता है नाइट ब्लड स्लाइड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रात में ये रक्त सैंपल लिया जा रहा है, और एक या उससे अधिक लोगों का ब्लड पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वहां पे ये बीमारी बहुत फैली हुई है। और इसके लिए क्या करना है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाएं बढ़ती है जिसको सभी लोगों को उसका सेवन करना होता है। इसमें आप देखेंगे जो हरा कलर दिखाई पड़ रहा है मैप में, चलाया जाएगा, उसकी सूची अर्चना जी आपको दे देंगी। मोस्ट प्रोबेबली आप उस जिले या उसके आसपास के जिले के होंगे, इसीलिए आपको इसमें इनवाइट किया गया है। उसे हम कहते हैं DA, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, और वो अपने क्षेत्र का पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा पोलियो में एक माइक्रो प्लान बनता था, पोलियो में लोग घर घर जाके ड्रॉप दिया करते थे, लेकिन वहां पे केवल 5 साल के से नीचे के बच्चों को ही दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में सभी लोगों को हमें ट्रैक करना पड़ता है और सबको देना है दवा, एक्सेप्ट 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं, या कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो, अदरवाइज एवरीबडी हैज टू बी कवर्ड। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, लेकिन इसके बारे में सबसे कम नॉलेज जनता को है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज समझिए इस प्रोग्राम को, और जितना हो सके इस प्रोग्राम में योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक बार होता है, और प्रोग्राम्स तो मान लीजिए कुछ महीनों में रिपीट भी होते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार। तो जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया उस समय, वो छूट जाएगा और वो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम हियर इज, भले

0: उसके अंदर सिम्टम ना दिखाई पड़े, बट दैट पर्सन कैन बेसिकली स्प्रेड द डिजीज टू अदर इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर मेरे अंदर है वो माइक्रोफाइलेरिया, मैं हेल्दी दिख रहा हूँ, बट इफ द मॉस्किटो बाइट्स मी एंड बाइट समबडी एल्स, तो वो वहां फैल जाए। तो इसमें आप लोग देखिए कैसे वर्कर जाते हैं घर पे, जो लोग घर पे नहीं होते हैं उनके लिए दवाएं नहीं बांटी जाती हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम में दवाएं बांटी जाती थी। गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड द मेडिसिन, बट वी नीड टू कंज्यूम द मेडिसिन। हम तो यहां तक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ठीक है इस प्रोग्राम की दवाओं पे हमें विश्वास कम है, भले ही ये विदेश से आई हैं और अच्छी दवाएं हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए प्राइवेट से खरीद लीजिए, सेम दवाएं अपने डोज के हिसाब से प्राइवेट से ले लीजिए, खा लीजिए, बट प्लीज कंज्यूम कीजिए। ये जो मैसेजिंग है हमें देनी पड़ेगी। सेकेंड, शहरी क्षेत्र में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, एंड मेनी ऑफ देम फील कि हम क्यों खाएं, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई नहीं है, हम तो गुड नाइट कॉयल लगाते हैं, हमारे पास मच्छर काटने का भी नहीं। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कभी तो पार्क में निकलते होंगे, कभी तो मार्केट जाते होंगे, क्या वहां मच्छर नहीं काट सकता? और ये जो मच्छर काटता है ये मच्छर क्यूलेक्स वेराइटी का होता है। मच्छर की फैमिली होती है, चार मुख्य प्रकार होते हैं, उसमें क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलीज, मंसोनिया होते हैं। लोग खाते नहीं थे, तो ये रीजन है लोगों ने दवाएं क्यों नहीं खाई थी। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया कि नहीं आपको घर में दवा बांटनी नहीं है, सामने खिलानी है, तो ये प्रॉब्लम घट के केवल 27% रह गई।
1: क्या
0: जो
1: बताया
0: सेकेंड कैटेगरी है
1: आपने?
0: अबसेंट वाली, ये वो लोग हैं जब टीम हमारी घर पे गई है, पीपल वेर नॉट एट होम। तो ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हर कोई जाएगा अपने काम के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये लोग अगर काम करने से पहले अगर दवा खा लें, या काम करने के आने के बाद जाके आशा बहन से मिलके, या किसी भी हमारे मेडिकल जो गवर्नमेंट की पीएससी या सब सेंटर है वहां से खा लें, तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे और डिजीज को ट्रांसमिट करने से भी बचेंगे। तीसरी कैटेगरी आप देखिए पर्पल में 18%, ये रिफ्यूजल वाले लोग। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए आप जो नहीं खा रहे हैं ये सिर्फ आप अपना घाटा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप ये पूरे देश का घाटा कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेट करनी है भारत से, खत्म करनी है भारत से, और जो व्यक्ति इसमें दवा नहीं खाया उस इलाके का, वो बेसिकली ट्रांसमिट दोबारा कर सकता है उस इलाके में। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हर किसी को मास्क लगाने के लिए कहा गया था, हम बचाव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइलेरिया एक बार निम्फेडेमा हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट या सर्जरी नहीं हो सकती जिससे हम पैर की सूजन कम कर सके, हाइड्रोसिल केवल हम ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते। उसमें अगर आप देखिए बाएं तरफ अनीमिया दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड में आपको अंडरवेट यानी कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, और नीचे सेंट्रिश की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत में अनीमिया भी बहुत ज्यादा है, कुपोषण भी बहुत ज्यादा है। जो दवाएं दी जाती है इस मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एल्बेंडाजोल होती है, डीईसी एक होती है, और एक तीसरी कुछ जगहों पे आइवरमेक्टिन होती है। तो जहां जहां एल्बेंडाजोल और डीसी दिया जाता है, एल्बेंडाजोल न केवल फाइलेरिया वाले कीटाणुओं को मारता है, मतलब मार तो नहीं पाता है, कम कर देता है उनका रिप्रोडक्शन, केवल माइक्रो फाइलेरिया को मार पाता है, पर एल्बेंडाजोल जो आंत वाले हमारे कीड़े थे, कृमि जो मैं पहले बता रहा था आपको, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, उनको मारता है। तो कम से कम वो जो मैल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा अगर ये दवाएं सब लोग टाइम पे खा लेंगे। अनीमिया का एक मुख्य कारण होता है हुकवर्म, ये हमारे आंतों में रहता है और खून चूसता है। जहां जहां पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, आइवरमेक्टिन उस हुकवर्म को भी मारती है, यानी कि जो ब्लड सक करने वाले वर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे, जिसका बेनिफिट होगा अनीमिया हमारा कम होगा। तीसरी चीज, जहां जहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जा रही है वहां पे और बेनिफिट है, जिसे स्केबीज है, जो दाद खाद खुजली हम बता रहे थे आपको, और जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो जुए होते हैं आइवरमेक्टिन से, वो भी मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रिपल ड्रग में, न सिर्फ फाइलेरिया बल्कि पेट के आंत के कीड़े, खुजली वाले कीड़े, हुकवर्म और जुए, ये सब भी मर जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे, और आपको सिर्फ एक चीज कहनी है कि डोंट वेट फॉर हेल्थ वर्कर टू कम टू योर हाउस, यू शुड एक्चुअली अप्रोच

टू द हेल्थ वर्कर एंड ट्राइंग टू गेट द मेडिसिन एज सून एज पॉसिबल। इसको केवल चबा के खाना है, चबा के खाना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चबा के खाना है। जो दूसरी आप देख रहे हैं बीच में सफेद कलर की, ये आइवरमेक्टिन की गोली है, इसको पानी के साथ लेना है। इसका नियम ये होता है, ये हाइट के हिसाब से होती है, 5 साल से छोटे बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती है। 90 सेंटीमीटर के आमतौर पर उनकी हाइट होती है, तो 90 से 120 सेंटीमीटर के लोगों को एक गोली, 120 से 140 तक दो गोली, 140 से 160 तीन गोली, और जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है उसको चार गोली दी जाती है। और जो तीसरी गोली आप देख रहे हैं ये DEC है, ये उम्र के हिसाब से दी जाती है, 2 साल से 5 साल के बच्चे को एक गोली, 5 से 15 साल के बच्चे को दो गोली, और 15 से बड़े को तीन गोली। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है जो एडल्ट होगा उसको मल्टीपल टैबलेट्स मिलेंगी, उसे घबराना नहीं है, वो उसलिए मिल रही है मल्टीपल टैबलेट्स क्योंकि उसकी डोजिंग उम्र और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक खा लेंगे बाकी छोड़ देंगे और हमारा अभियान में रोल हो गया। तो आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बार बार लोगों को बताइए पूरी डोज लीजिए। आप सोचिए कि फूल झाड़ू से मार ले क्या होगा, उल्टा आपको आके काट ही लेगा। तो यहाँ पे समझाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बचाने के लिए डोज पूरी लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, और अब मैं ओपन करता हूं डिस्कशन। अर्चना जी, ओवर टू यू।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now, 9639010313.

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एंड हियर वी गो आरजे वंशी इन द स्टूडियो। हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वंशी और लेकर हाजिर हूं आपके वाले प्रोग्राम नाम है जिसका सेहत सखी और संसार। 9:11 24 सितंबर आज की तारीख और दिन है आज का गुरुवार। वेल गुड वाली मॉर्निंग, गुड वाली फाइव और गुड वाला फॉर्म ऑफ द डे। चलिए आपको पेश करते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है, यदि आप बदलाव से डरेंगे तो आप प्रगति कभी नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, हमारा जो जीवन है, प्रकृति और समाज हर पल बदल रहा होता है। मौसम बदलता है जिस तरीके से, बिल्कुल वैसे ही समय भी बदलता है, तकनीक बदलती है, फिर भी इंसान की सबसे बड़ी स्वाभाविक प्रवृत्ति ये होती है कंफर्ट जोन में रहना और किसी भी नए बदलाव का विरोध करना। तो इसीलिए जहां सुरक्षा का एहसास होता है ना, वहां सीखने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो शुरुआती डर स्वाभाविक है, लेकिन उसी डर के पार आपकी सफलता छिपी है मेरे दोस्त। इसीलिए अडैप्टेबिलिटी को आप सीखिए, उसको मान लीजिए कि ये आपका सबसे बड़ा गुण है। इतिहास गवाह है, जो जीव या कंपनियां समय के साथ खुद को नहीं बदल पाई, उनका अस्तित्व खत्म ही हो गया। समय की मांग के अनुसार नई चीजें सीखना और पुरानी अप्रभावी आदतों को छोड़ देना, यानी कि अनलर्न एंड रीलर्न, बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो गलतियां होना जायज है। उन गलतियों को हार मानने के बजाय एक अनुभव के रूप में स्वीकार करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए आज कोई ऐसा काम करें जिससे आप अब तक बचते आए हैं, चाहे वो कोई नई भाषा सीखना हो या सुबह जल्दी उठना हो या कोई कठिन कार्य निपटाना हो। और अगर किसी काम को करने का आपका पुराना तरीका असरदार नहीं हो रहा है तो नए नज़रिए और तकनीकों को अपनाने से आपको हिचकिचाना नहीं है। आज दिन भर में अगर चीज़ें आपकी योजना के मुताबिक भी नहीं हैं तो चिढ़ने की बजाय आप स्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। जब हवा का रुख बदलता है ना दोस्त, तो कुछ लोग दीवारें बनाते हैं और कुछ लोग पवन चक्की। अब आपको देखना है आप विंड मिल बनाएंगे या दीवारें। फिलहाल चलिए बहुत ही प्यारा सा गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रॉम द मूवी खलनायक। इस गाने को एंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है, 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के साथ साथ मुझे आप व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल चलिए बहुत ही प्यारा से गाने के साथ आपको कनेक्ट कर रही हूँ। ये गाना आपके लिए मेरे दोस्त।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, 9:27 एज पर माई स्टूडियो क्लॉक एंड आई एम योर आरजे वंशी। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार फिलहाल, क्योंकि आज की तारीख है 24 सितंबर। तो आज की बात कर लेते हैं कि आज है क्या खास और क्या है आज का इतिहास। आपको बता दूं कि 2014 में इसरो का मंगलयान मिशन आज ही के दिन जो है किया गया था। आज ही के दिन को अपने पहले ही प्रयास में मंगलयान को मंगल ग्रह यानी कि मार्स की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करके इतिहास रच दिया गया था 2014 में। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने अपने पहले प्रयास में ही ये उपलब्धि हासिल की थी। तो ये है प्राउड वाली मोमेंट, इजंट इट। और इसी के साथ 2007 में भारत पहली बार T20 विश्व कप विजेता बना था। इसी दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका में खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर पहला ICC T20 विश्व कप अपने नाम कर लिया था, जीत लिया था। वहीं आपको बताऊं कि 1932 के बाद तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवदा जेल में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसके तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटें सुरक्षित की गई थी। जी, और इसी के साथ आपको बताऊं 1873 की बात जो आज ही के दिन को डिपिक्ट करती है, तो महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य शोषित और पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाना था। 1726 की बात आपको बताऊं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में नगर निगम और मेयर अदालतों की स्थापना करने का अधिकार भी आज ही के दिन प्राप्त हुआ था। वहीं 1674 में तांत्रिक विधि से छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक संपन्न किया था। चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, सारी की सारी बातें आपसे करूंगी, लेकिन फिलहाल हम आनंद मूवी का बहुत ही बेहतरीन सा गाना एंजॉय करने वाले हैं। बाकी आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। नंबर बड़ा ही सिंपल सा है मेरा दोस्त, 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप मुझे जोड़ सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको जोड़ रही हूँ इस प्यारे से गाने से, कहीं मत जाइएगा, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: कभी ये गुनाह।
1: हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषि भुटानी और मैं हूँ बॉलीवुड एक्टर और आप लोग सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: नमस्कार, मेरा नाम शरद है, मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मैं आरजे वंशी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनका रेडियो प्रोग्राम आजाद हिंद रेडियो डेली सुनता हूँ। मुझे उनका कंटेंट काफी पसंद है। मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे काफी अच्छी वाइब्स आती है, काफी रिफ्रेशिंग फील होता है। मैं उनसे अपने थॉट्स डिस्कस करता हूँ, रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आता है। मुझे काफी अच्छा लगता है उनसे बात करके, मुझे उनकी आवाज काफी अच्छी लगती है। कई बार उनसे बात करके ऐसा ही फीलिंग आती है जैसे आप अपने किसी घर के सदस्य से बात कर रहे हैं। मैं काफी टाइम से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। मैं रहने वाला मेरठ का ही हूँ। उनसे बातें करके मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी सुनिए उनका प्रोग्राम, उनसे जुड़िए, उनसे बात कीजिए। जब भी आपको टाइम मिले एक बार उनसे बात कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल घर वाली फीलिंग आएगी।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
4: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
5: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
6: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों 9:51 हो गए हैं एंड विजयपथ मूवी का भी हमने गाना एंजॉय किया। बाकी आज की कुछ खास बातें मैंने आपको बताई, यानी के 24 सितंबर की क्या खास बात है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि 1861 में मैडम भिकाजी कामा यानी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला क्रांतिकारी, जिन्होंने पहली बार विदेशी धरती यानी के जर्मनी पर भारत का झंडा फहराया था, आज के दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। 1861 में उनका जन्म हुआ था। वहीं 1856 में प्रताप नारायण मिश्र, जो कि हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के प्रसिद्ध साहित्यकार व उन्नायक हैं, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। 1950 में भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ, जो 1984 के विश्व कप विजेता दल के मैन ऑफ द मैच सेमीफाइनल व फाइनल में रहे थे, उनका भी आज के दिन जन्मदिन मनाया जाता है। और आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला तैराक जो रही, उनका जन्म भी आज ही के दिन 1940 में हुआ था। दोस्तों आज के दिन नाना साहब धुंधु पंत का निधन हुआ था 1859 में। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता रहे हैं और 2006 में दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मिनी और मशहूर भरतनाट्यम नृत्यांगना का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। इसी के साथ दोस्तों आपको बताऊं कि 24 सितंबर का दिन ये याद दिलाता है कि भारत ने सामाजिक क्रांति और आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अंतरिक्ष विज्ञान की ऊंचाइयों तक हर क्षेत्र

में अपनी पहचान बनाई है, ये इस बात का सबूत हो जाता है। बाकी और भी बातें आपसे करूंगी, लेकिन बिफोर दैट चलिए एंजॉय करेंगे बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी अनाड़ी।

0: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।
1: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आप

0: आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर,
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

मित्रों नमस्कार। आज बात करते हैं आजाद हिंद रेडियो की। आजाद हिंद रेडियो में एक आरजे हैं, आरजे वंशी, जो कि बहुत ही सुंदर आवाज और बहुत ही सुंदर नेचर की हैं। मैं रेगुलरली आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के द्वारा जुड़ा हुआ हूं। मैं शिवम ऋषिकेश से बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि आप भी आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के जरिए जुड़िए और प्यारी सी आवाज आरजे वंशी को सुनिए दोपहर 11 से 1 मंडे टू सैटरडे आजाद हिंद रेडियो, जिसे सुन के लगता है कि हाँ, कुछ वो पुरानी यादें से हम जुड़े हैं जो हम रेडियो से पहले जुड़ते थे। आज वही बात आजाद हिंद रेडियो के द्वारा, आरजे वंशी के द्वारा हमें उसी लगाव से मिलाती है जो लगाव हम

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेल वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 10:12 हो गए हैं, 24 सितंबर आज की तारीख, गुरुवार आज का दिन, और मैं आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए बिल्कुल हाजिर हूँ दोस्तों। और इसी के साथ चलिए आपको बता देती हूँ कि आज के इतिहास में क्या और भी ज़्यादा खास हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था अभी कुछ देर पहले कि हम ना पहले प्रयास में मंगल की कक्षा पर पहुँच गए थे। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात और आपको बता देती हूँ। 24 सितंबर 2014 के ही दिन भारत का मंगलयान अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। भारत पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। अब इसके बारे में और भी थोड़ी सी बात करेंगे। मंगलयान मिशन का आधिकारिक नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन था। इसका मकसद अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह की

कक्षा में पहुंचाना था। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी संगठन इसरो ने इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था। वहीं आपको बताऊं कि मंगलयान को मंगल ग्रह तक पहुंचने में 10 महीने लगे। इसने पृथ्वी के चारों ओर कई चक्कर लगाकर अपनी गति को बढ़ाया था। वहीं 24 सितंबर 2014 को ये सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंच गया था। इसके साथ ही भारत पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। वहीं मंगलयान का मुख्य उद्देश्य मंगल की सतह, वातावरण और वहां मौजूद मीथेन गैस का अध्ययन करना था, इसलिए ये सब किया गया था। वहीं आपको बताऊं कि क्लाउड का नया AI मॉडल लॉन्च हो चुका है। एंथ्रोपिक ने नया AI मॉडल क्लाउड ओपस 5.5 लॉन्च कर दिया है। ये पिछले मॉडल की तुलना में 40% कम लागत में चलता है और इसे Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल कराया गया है, जिसे लोग उपयोग में ले सके। वहीं कुछ और बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूँगी सारी की सारी, बट मेन टाइम हम इंजॉय करेंगे बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी प्यासा सावन।

हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

0: 91.0 FM.
1: वंशी, आपका प्रोग्राम सच में बहुत अच्छा है। मैं कभी रेडियो नहीं सुनती थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनने के लिए इंस्पायर किया है, तब से मैं सुनने लगी हूँ और सच में बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम। स्पेशली आपका मतलब आरजे वंशी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आजाद हिंद रेडियो, कीप ग्रोइंग।
2: आँखों में बातों ही बातों में तूने चुराया जिया।

0: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
1: क्या कर रही हो मतलब, रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
0: रात का बासी पानी?
1: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
0: तुम्हें पता भी है, देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता। वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
1: तो फिर कैसे किया जाए?
0: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए, और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
2: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
4: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
3: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
5: You are listening आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और इसी के साथ क्योंकि प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि मेरी आपसे बातें होती ही रहती हैं और मैं आपकी बातें सुनती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ और मुझसे कहना है, कुछ और मुझसे शेयर करना है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा नंबर हो जाता है मेरा 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसी के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर भी, यानी कि आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, मेटा, एक्स और यूट्यूब पर हमारे आजाद हिंद रेडियो से। बाकी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आपको जाना होगा सर्च करने के लिए आजाद हिंद रेडियो और बहुत ही आसानी से आपको हमारा अकाउंट मिल जाने वाला है। बिल्कुल वैसे ही मेटा पर अगर आप आजाद हिंद रेडियो सर्च करते हैं तो आपको हमारा पेज जरूर मिलने वाला है। आप उससे जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए और हम तक अपनी बातें सीधे पहुंचाइए और साथ ही साथ आप बाकी के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं हमारी पहुंच से दूर, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी से दूर और आप तक हमारी रीच नहीं बन पा रही है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन और जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी और मुझे भी बताकर ही बहुत खुशी होती है कि मेरठ में ये पहला रेडियो स्टेशन है जिसके पास मोबाइल एप्लीकेशन है और अभी तक ये इकलौता ऐसा रेडियो स्टेशन है जो आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें और अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहें, अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें और अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाते रहें, तो इसी सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये आपके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनवाया है। तो आप इसको इंस्टॉल करें, हमसे जुड़ जाएं और अपनी बात सीधे हम तक पहुंचाएं, हमसे शेयर करें जो भी आप कहना चाहते हैं। किसी गाने की फरमाइश करनी है तो वो कर सकते हैं, किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप अच्छा लिखते हैं या बोलते हैं तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ लिखते हैं तो वो जरूर हमें लिख करके भेजिए, हम आपके नाम के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप हमें वॉइस नोट भी भेज सकते हैं अपने किसी पीस ऑफ राइटिंग या पीस ऑफ आर्ट को लेकर के। बाकी अभी तो इतना ही कहूंगी कि आप इतना प्यार भेजते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिलहाल आपके प्यार को सलाम करते हुए ये गाना आपके लिए लेकर आई हूँ। आप यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

0: अमा मियाँ पान खाके तो मजा ही आ गया। अब एक काम करो, एक बढ़िया सी सिगरेट दे दो जिसे पी के कलेजे में ठंडक पड़ जाए।
1: अरे क्या बात है मियाँ, लगता है 20-25 लाख वाला बीमा करवा लिया है या लॉटरी लग गई है।
0: नहीं भैया, बीमा तो नहीं कराया है, पर काहे?
1: आप जिस तरह से तंबाकू और सिगरेट का प्रयोग कर रहे हैं उससे जल्द ही आपके घर में भयानक मेहमान आने वाले हैं।
0: भयानक मेहमान कैसे होते हैं भैया?
1: अरे जैसे कैंसर, कुमार, दमा रानी और टीबी।
2: जी हाँ, पान मसाला खाना व धूम्रपान करना जानलेवा है। इससे आपको कैंसर, अस्थमा, चर्म रोग, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग और टीबी हो सकता है। तो आज ही एक कदम बढ़ाएं अपनी सेहत की तरफ। आओ ये संकल्प करें, धूम्रपान को बंद करें।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। द मार्स रिजॉर्ट्स। चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी। मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First। और दोस्तों 11:14 हो गई हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे लिसनर्स। वेल, आपको बता दूं जो भी हमारे श्रोता हैं कि सुबह 9 बजे ही मैं आ जाती हूँ, 9 बजे से पूरे 1 बजे तक आपसे बातें होती हैं बिल्कुल लाइव। तो आप सिर्फ 11 बजे का ही इंतज़ार ना करें, आप 9 बजे कर कुछ मिनट पर भी मुझसे जोड़ सकते हैं, अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल चलिए, जुर्म मूवी का हमने गाना एंजॉय किया। बाकी मैं आपको बता दूं कि अपनापन जताने वाले बहुत मिलते हैं, निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जॉन डिकस्ट्रो जी, आप जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ आपने एक गाने की फरमाइश भी की है। ये गाना हम बिल्कुल आपके लिए प्ले करने वाले हैं। हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं रोजी डिकस्ट्रो, पॉल डिकस्ट्रो, विलिस डिकस्ट्रो और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सैयद मशरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, आफिया और साथ ही साथ इब्राहिम और सद्दाम भी, कुमार हेड़ा से, सहारनपुर से ही आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो इसका तहे दिल से शुक्रिया। आपका गाना भी हम बिल्कुल चलाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम रिक्वेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली का जो है गाना प्ले करेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे करूँगी कुछ बातें। देखिए, मेंटल पीस ना बड़ी ज़रूरी हो जाती है, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रातों रात मिल जाए, बल्कि ये हमारी दिनचर्या, विचारों और आदतों का रिजल्ट होती है। जो हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, तनाव है और जो उसमें अनसर्टेनिटी, उसके बीच मन को शांत रखना मतलब बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है अपने आप में। और जिसको ये कला आती है भाई साहब, वो तो फिर बढ़िया है उसका। तो इसी के साथ आपको बताऊं कि हमारा मन या तो बीते चुके कल की चिंताओं में अटका रहता है या आने वाले कल के डर में। जब भी मन भटके, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को याद दिलाएं कि केवल अभी का पल ही आपके नियंत्रण में है। वहीं तनाव का एक बड़ा कारण दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना होता है। ये स्वीकार करें कि हर व्यक्ति और परिस्थिति आपके हिसाब से नहीं चल सकती। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते, जैसे कि परिस्थितियाँ या दूसरों का व्यवहार, उन्हें स्वीकार करना सीखें। बदलाव केवल खुद से ही संभव है, तो इस बात को हमेशा याद रखें। कुछ ऐसी चीज़ें आज आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप मेंटल पीस को अपने बरकरार रख सकते हैं या रख सकती हैं। फिलहाल डिकेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली का ये फरमाइश वाला गाना, इस गाने को एंजॉय करेंगे। उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा, यूं ही सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर, संपर्क कीजिए 8194007405।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर, कॉल नाउ 9639010313। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
4: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First, 11:43 हो गए हैं और अभी हमने अच्छा गाना सुना परिचय मूवी का, है ना, सारे के सारे। इसी के साथ चलिए दोस्तों, वी वर टॉकिंग अबाउट मेंटल पीस कि आप किस तरीके से मेंटल पीस को अटेन कर सकते हैं। देखिए, इसका वैसे तो कोई फिक्स्ड फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे एफर्ट्स हैं जो हम कर सकते हैं और शायद फिर हमें थोड़ा अच्छा लगे। जैसे कि आप प्रेजेंट में रहना सीखें, ना तो कल के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लें, ना ही बीते हुए कल की बारे में आप सोच सोच कर अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाएं। इसी के साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कम रखें। दूसरे लोगों से तो एक्सपेक्टेशन रखना बेकार है, आप खुद से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ये आपके करियर के लिहाज से भी अच्छा होता है। इसी के साथ एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार्यता, इस ट्रेट को अपने अंदर लेकर आएं। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते, जैसे कि कोई कंडीशन है या दूसरों का बिहेवियर, आप उन्हें स्वीकार करना सीख लें। बदलाव केवल खुद में ही संभव है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इसी के साथ डिजिटल डिटॉक्स करना भी बड़ा ज़रूरी है ना। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देख करके अनजाने में आपके अंदर तुलना की भावना पैदा हो जाती है। दिन में कुछ घंटे फ़ोन से पूरी तरीके से दूर रहने का प्रयास करें और इसके लिए कोई आप फिक्स्ड

एमबी रख सकते हैं। इसी के साथ सुबह उठते ही या सोने से ठीक पहले हिंसक निराशाजनक खबरें या नकारात्मक सामग्री देखने से आप बचें और अपनी सीमाओं को पहचानें। यदि कोई काम आपकी कैपेबिलिटी या आपकी मेंटल पीस से बाहर है तो उसे विनम्रता से बड़े ही आराम से मना कर दें, क्योंकि ना कहना आना चाहिए, लर्न टू से नो, है ना। इसी के साथ दोस्तों बहुत सारी बातें आपसे करूंगी, फिलहाल बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, बीबी नंबर वन मूवी का। इस गाने को एंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: जंगल है, आधी रात है।
1: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: आपका प्रोग्राम सच में बहुत अच्छा है। मैं कभी रेडियो नहीं सुनती थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनने के लिए इंस्पायर किया है, तब से मैं सुनने लगी हूँ। और सच में बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम, स्पेशली आपका, मतलब आरजे वंशी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो आजाद हिंद रेडियो, कीप ग्रोइंग।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों 12:08 हो गए हैं, 24 सितंबर आज की तारीख है, एंड आज हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरीके से अपनी मेंटल पीस को बरकरार रख सकते हैं, है ना। इसके लिए छोटे छोटे से एफर्ट्स तो आपको डालने ही पड़ेंगे। इसी के साथ आपको बता दूं कि आप रेगुलर बेसिस पर केवल 10 से 15 मिनट का अनुलोम विलोम कर लेते हैं या प्राणायाम कर लेते हैं या मेडिटेशन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको शांत रहने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। वहीं अधूरी नींद चिड़चिड़ापन और तनाव का सबसे बड़ा एक कारण माना जाता है, तो रोज़ाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद आप ज़रूर लें। वहीं रोज़ाना कम से कम 30 मिनट टहलना, योग करना या व्यायाम करना शरीर में एंडोर्फिन्स नामक जो हैप्पी हार्मोन होता है उसको बढ़ाता है, जो कि आपकी ज़िंदगी में जो भी तनाव चल रहा होता है उसको कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए आप कम से कम टहले ज़रूर, और साथ ही साथ रोज़ रात को सोने से पहले उन 3 चीज़ों के बारे में सोचें या फिर आप लिख भी सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, यानी कि ग्रेटिट्यूड का भाव रखें। और ये जो प्रैक्टिस है आपके दिमाग को कमियों के बजाय उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए होती है, ताकि आप सिर्फ अच्छी चीज़ों को देख पाएं। वहीं हर दिन कुछ समय आप धूप लें, हरे पेड़ पौधों के साथ टाइम व्यतीत करें, ताज़ा हवा आप लें। प्रकृति के बीच रहने से मानसिक थकान तुरंत कम हो जाती है, इसलिए आप ये भी कर सकते हैं। वहीं अपनी बातों या तकलीफ़ों को मन में दबा करके ना रखें, किसी भरोसेमंद मित्र परिवार के सदस्य से आप बात कर सकते हैं, या अगर आप अकेले रहते हैं तो आप अपनी डायरी में भी वो लिख सकते हैं। इससे भी आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन देखने के बजाय 5 मिनट शांति से बैठें, 3 गहरी सांसें लें और ख़ुद से कहें, आज का दिन जैसा भी रहेगा मैं शांत रहकर हर परिस्थिति का सामना करूँगा या करूँगी। फिर देखिएगा बदलाव ऐसे ही शुरू होते चले जाएंगे। फिलहाल 12:10 हो गए हैं। गुड वाली नून जिद्दी मूवी का बहुत ही बेहतरीन सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल कॉल या मैसेज कर सकते हैं, नंबर 9639012111 हो जाता है मेरा, और इस नंबर पर आप जुड़ करके व्हाट्सएप पर भी मुझसे बातें कर सकते हैं। फिलहाल ये गाना आपके लिए है।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेल वेल वेल वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूं और इसी के साथ प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार मेरे यानी आरजे वंशी के साथ। कुछ बातें आपसे करती हूं इस प्रोग्राम में जो हो जाती है संसार से रिलेटेड, तो वही कुछ बातें आपसे करती हूं जो होती है आपकी सेहत से रिलेटेड, वही कुछ बातें होती है जो होती है हमारी सखियों से, और कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आपको बताती हूं जो आपकी लाइफ को और भी ज्यादा सिंपल और सॉर्टेड कर देता है ना। तो कुछ ऐसे ही टिप्स आपसे साझा करती हूँ। वहीं अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है हमारा, 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। बिल्कुल लाइव आपसे बातें होती हैं, तो इस दौरान आप फरमाइशें भी कर सकते हैं किसी गाने की, और साथ ही साथ किसी गाने को आपको किसी को डेडिकेट करना है तो वो भी आप जरूर कर सकते हैं। कुछ अच्छा लिखना जानते हैं तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर कोई और भी कलाकार है तो इसके बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, और हमें पसंद आएगा कि अगर आप अपनी कला हमसे साझा करेंगे। वहीं आपको बता दूं कि अब आपका जो रेडियो है आजाद हिंद रेडियो, वो बहुत सारे सोशल हैंडल्स पर मौजूद है, यानी कि आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और साथ ही साथ आप जा सकते हैं मेटा पर भी, जिसको आप फेसबुक के नाम से भी जाना करते हैं। वहीं आप जा सकते हैं एक्स पर, तो आप जा सकते हैं यूट्यूब पर भी। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको दुनिया के किसी भी कोने में से मिल सकते हैं, वो है आपका प्ले स्टोर। आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, जिसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। बच्चा तलक भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, और हमसे जुड़ जाइए और यूं ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। फिलहाल आपको जोड़ूंगी इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों।

0: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। प्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
2: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
4: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
5: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
4: एडमिशन्स के

0: लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
1: हेलो, मारो नाम मेयर जसमत भाई बच्चू भाई, गाम नाना पाड़ियात, तालुको जिलो बोटाद गुजरात। हम तो अमे खूब लांबा समय थी आजाद हिंद रेडियो सांभळवे छी अने सांभळवानी खूब मजा आवे छे। अने आज वंशीबेन नी वातो खूब आनंद आपी दे तेवी होय छे। अने खास तो अमने ए वात नो आनंद थाय छे कि आज वंशीबेन नी भाषा हिंदी छे, छता थोड़ू घणु 100% नहीं पण छता थोड़ू घणु अमारी साथे गुजराती मां वात करी लेशे। एमे कि हालो वंशीबेन केम छे, ताके शुं जसमत भाई मजा मां छो ने, एटले ए वात नो अमने खूब आनंद थाय छे कि अमारी साथे आज वंशीबेन गुजराती मां थोड़ू घणु बोली लेशे अने हमेशा आनंद मां रहेवानी। थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: लेन बदलने के लिए आपको आगे पीछे देखना है, आपको शीशे आगे पीछे देखने के लिए होते हैं, और इनकी सिस्टम भी होता है। अगर 3 लेन रोड है तो उसके अंदर ऊपर वाली लेन जो है वो उन जो 100 से ऊपर की गति के लिए उनके लिए है। बीच वाली जो है मिड लेन जिसे बोलते हैं वो कितनी है, 60 और 70 के लिए। अगर आप उससे नीचे गति पर है, 50-40 पर है, तो आप तीसरी लेन में नीचे वाली लेन पे काम कर सकते हैं। कई बार हम लोग गति हमारी 40 है और हम लोग हाई लेन पे चल रहे हैं तो पीछे वाले को परेशानी होती है। इसीलिए अगर कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति है जो 60 से ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है अपने वाहन के आगे और पीछे ई लिखवा ले एल्डर, जिससे पीछे बैठने चलने वाले को पता लग जाए कि ये वृद्ध आदमी है। वो अपने उस चीज से बच जाए जो रोड रेज होती है।
2: जी
1: बताना चाहूंगा वंशी, रोड रेज में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हम एक दूसरे से अननोन होते हैं, लेकिन वो मुझे आगे क्यों नहीं निकलने दे रहा, इसी बात से गुस्से में आकर हम लोग अपने वाहन से उतरते हैं। कई बार हथौड़ा मार देते हैं, चाकू मार देते हैं, गोली मार देते हैं। तो इससे रोड रेज के अंदर ही भारत के अंदर बहुत सारी दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है।
2: बहुत सही आपने बातें बताई। इतने ज्यादा संख्या में हमारे इंडिया में एक्सीडेंट्स होते हैं और फिर भी लोग जागरूक होने के लिए तैयार नहीं हैं, और छोटी छोटी लापरवाही उनको भारी पड़ जाती है। और इवन उनको उनके साथ नहीं बल्कि जो उनके साथ चल रहे हैं सड़क पर, हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसीलिए आप खुद भी सतर्क होकर चलिए और दूसरे की सुरक्षा का भी आप ध्यान रखिए, ताकि वो भी परेशान ना हो और आप भी परेशान ना हो, और घर पर आप शाम में सुरक्षित पहुंचे और बिल्कुल स्वस्थ पहुंचे।
1: तो देखिए, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का मतलब मैं इस बात को और बताना चाहूंगा। अचानक आपने सवाल नहीं करा लेकिन मेरे पास है, क्योंकि हम लोग अपने आप को तो बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन सामने वाले को नहीं, जो भारतीय है। हाँ। जो

0: भारती हैं, हम उनको नहीं बचाते। इसी को संज्ञान में लेते हुए जो हम इंश्योरेंस की बात करते हैं
1: जी,
0: इंश्योरेंस हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव करा लेते हैं, जबकि गवर्नमेंट ये कहती है, लॉ ये कहता है कि आप कोई भी इंश्योरेंस कराएं या ना कराएं, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज द मस्ट फॉर योर एंड योर व्हीकल।
1: ओके,
0: थर्ड पार्टी का मतलब सामने वाले व्यक्ति को इंश्योर्ड अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप वाहन को सड़क पर लेकर नहीं निकल सकते। थर्ड पार्टी का मतलब सामने वाले व्यक्ति अगर घायल होता है या मारा जाता है तो उसके अंदर आप भी सुरक्षित हो गए, क्योंकि अब आपको नहीं लड़ना कोर्ट में, वो कंपनी लड़ेगी। तो इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना अपने वाहन को घर पर ना निकालें, क्योंकि घर में सुरक्षा देने के लिए होती है हमारे पास माँ, लेकिन वाहन पर होते हैं तो सुरक्षा देने के लिए होता है हमारे पास बीमा
1: जी।
0: इसलिए माँ और बीमा के बारे में जरूर ध्यान रखें, आप हमेशा सदैव सुरक्षित रहें।
1: बहुत सही बात आपने कही कि माँ और बीमा दोनों ही आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और बिल्कुल आपको ये प्रेफर करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस टॉक शो को अभी हम यहीं थाम लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम सर से मुलाकात करेंगे और बाकी के विषयों पर बात करेंगे। बाकी आपके कोई सजेशंस हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही आसान सा नंबर है हमारा 9639012111। आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर भी और वहां पर जाकर अपनी कोई भी बात हमसे साझा कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज आप आए हमारे स्टूडियो में, आपसे बात करके बहुत मैं कहना चाहूंगी मन प्रफुल्लित हो गया है और जानकारी क्योंकि आपने इतनी सारी दी है ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है क्योंकि मेरे ज्ञान में भी बहुत इजाफा हुआ है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर जाते जाते जो हमारे लिसनर्स हैं या जो छोटे बच्चे हैं जो जिद करते हैं कि हमें भी वाहन चाहिए देखा देखी के चलते, उन लोगों के लिए या जो हमारे पेरेंट्स हैं उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देश के आने वाले कल को रिलेट करते हुए माँ भारती की सेवा में समर्पण के साथ सिर्फ हम बात करें अपने जीवन की, जान की, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, इसलिए आने वाले कल को स्वर्णिम करने के लिए मैं फिर कहना चाहूंगा कि स्वस्थ रहें, रोकें दुर्घटना, यही हमारा बल होगा। और यदि सुरक्षित आज है अपना तभी सुरक्षित कल होगा। वंदे मातरम, जय हिंद। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, मैं वाकई कोई कहे ना कहे लेकिन मैं दोबारा रेडियो पर आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहूंगा। जय हिंद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और दोस्तों आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अंत तक हमारा टॉक शो सुना और आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप यूं ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और सड़क पर जब जा रहे हैं तो ये विश्वास के साथ जाएं कि आप अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ दूसरों की जिम्मेदारी भी लेकर चल रहे हैं। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
8: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो,

मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर वन सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं वास्तु कृष्णा। भारत और भारत की संस्कृति, दोस्तों ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना, जिसका आधार है राष्ट्र अनुभूति। किताब के लेखक यानी परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको समझाते हैं भारत और भारतीय संस्कृति के बारे में। भारत दो शब्दों का समुच्चय होता है, भा और रत। यानी भा का अर्थ होता है प्रकाश और रत का अर्थ होता है लीन रहना। इस नाते भारत का अर्थ बनता है वो क्षेत्र जहाँ के निवासी सदा ज्ञान प्राप्ति में लीन रहते हैं, उस क्षेत्र को भारत कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भारत राष्ट्र की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति का वर्णन भी मिल जाता है। विष्णु पुराण में भारत वर्ष की भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख मिलता है। ऐसा भूखंड जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वही भारतवर्ष है। आर्यवर्त, अधिकांश प्राचीन ग्रंथों में भारत के लिए आर्यवर्त नाम का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं इसका आशय संपूर्ण भारत से लगाया गया है। के शताब्दियों तक भारत के लिए आर्यवर्त शब्द का प्रयोग ही होता रहा। आर्यवर्त का नाम भारतवर्ष में कब और कैसे परिवर्तित हुआ, इस संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। जैसे एक मत के अनुसार ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर आर्यवर्त को भारतवर्ष कहा गया। दूसरा, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर आर्यवर्त को भारत कहा गया। एक प्रसंग के अनुसार जिस क्षेत्र में राजा भरत की प्रजा रहती थी, उस क्षेत्र को भारत कहा जाने लगा। भारत एक अति प्राचीन राष्ट्र के साथ साथ विश्व का मार्गदर्शक भी रहा है। भारत के मूल चरित्र को जो भाव प्रभावित करते हैं, उनमें प्राणी मात्र के प्रति अपनत्व भाव, सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के प्रति परम निष्ठा और जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करना, प्रत्येक विचार को सम्मान देना, प्रगतिशील दृष्टि प्रमुख है। यदि दार्शनिक आधार पर भारत के मूल चरित्र को परिभाषित करें तो वो सत्यम शिवम सुंदरम के महासूत्र से निहित है। जो सत्य है वही कल्याणकारी है और वही सुंदर भी है। स्वागत है आपका सुभारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना में।

भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस कार्यक्रम का आधार है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम है राष्ट्र अनुभूति, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये सपना देखने वाले आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी किताब के माध्यम से हमें समझाते हैं भारतीय संस्कृति के विषय में। किसी क्षेत्र विशेष में विकसित जीवन पद्धति, दर्शन, चिंतन धारा, इतिहास, गौरवशाली अतीत, प्रेरणादायक प्रसंग और महापुरुषों के महान कृत्यों से परिभाषित होती है। संस्कृति को किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नहीं बांधा जा सकता। भारतीय संस्कृति विश्व की महानतम और प्राचीनतम संस्कृति है। विश्व के इतिहास को देखें तो अन्य देशों की संस्कृतियां समय की धारा के साथ नष्ट होती चली गई, लेकिन समन्वयवादी दृष्टि के कारण भारतीय संस्कृति सदा स्थिर रही और समय की गति के साथ पहले से अधिक निखरती चली गई। भारतीय संस्कृति के समन्वय के अतिरिक्त दयालुता, उदारता, अहिंसा मूल भाव है। कभी कभी हम किसी भी भाव को असीमित एवं संपूर्ण समझने की भूल कर जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी भावों को सम्यक रूप से समझना है। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने सभी विचारों में सम्यकता का मिश्रण किया ताकि आमजन किसी भी भाव को संपूर्ण एवं असीमित समझकर उसके दुष्प्रभाव से हानि न उठाए। कुछ उदाहरण जिनसे आप शिक्षा ले सकते हैं, जैसे दयालुता। एक नदी के भीतर एक सन्यासी नहाने के लिए खड़े थे। उन्होंने देखा कि उसके पास से एक बिच्छू बहता चला जा रहा है। उसने बिच्छू को अपने हाथ से नदी के बाहर फेंकना चाहा। अपने स्वभाव के कारण बिच्छू का संपर्क जैसे ही सन्यासी व्यक्ति की हथेली पर हुआ, बिच्छू ने डंक मार दिया। मारे गए डंक की पीड़ा से उस सन्यासी के हाथ से वो बिच्छू पुनः पानी में गिर गया। अगली बार भी सन्यासी ने उस बिच्छू को बचाने के लिए वैसा ही किया। बिच्छू ने पुनः डंक मारा। बार बार ऐसा करता देख बाहर खड़े एक सामान्य जन द्वारा सन्यासी से पूछा गया कि जब ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है तो आप इसे बचाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? तब सन्यासी ने कहा, मेरा स्वभाव दया और दयालुता है एवं जब बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो भला मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? ये नहीं छोड़ सकता तो भला मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? ये अत्यंत सुंदर उपदेश है, परंतु इस सिद्धांत का अनुपालन सम्यक रूप से किया जाना चाहिए। कुछ लोग जिनका स्वभाव ही दुष्टता पूर्ण हो, उनके प्रति दयालुता करने के स्थान पर उनसे बचना ही अच्छा है। स्वागत है आप सभी का सुभारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना में। जय हिंद।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाझरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से, और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर, गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है आपका राष्ट्रीय चेतना। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस कार्यक्रम का आधार है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी द्वारा लिखित एक राष्ट्र अनुभूति नामक पुस्तक। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखने वाले परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको नारा देते हैं राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का। हम जहां हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, पहले हमें अपने देश के प्रति सोचना है। सबसे प्रथम देश आना चाहिए। देशभक्ति का जज्बा हम सभी के भीतर होना चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोस्तों यही है कि हम सभी के भीतर देश के प्रति चेतना जागृत हो। पुस्तक के माध्यम से लेखक हमको समझाते हैं भारतीय संस्कृति के विषय में, जैसे अहिंसा। गांधी जी ने कहा था कि यदि आपके गाल पर कोई एक चांटा मारे तो आप दूसरा गाल उसके सामने कर दे, वो दूसरे गाल पर भी चांटा मार दे तो उसके बाद पुनः पहला गाल उसके सामने कर दे। ऐसा आप तब तक करते रहें जब तक कि वो व्यक्ति थक न जाए। इसी सिद्धांत के कारण उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर की जा रही हिंसा का प्रतिकार करने के लिए या अपने को बचाने के लिए हिंसा के प्रयोग को सही नहीं माना। गांधी जी का ये उपदेश महात्माओं के लिए निश्चित रूप से श्रेष्ठकर है, आम जन के लिए नहीं। सही उपदेश है कि आप अहिंसा का सम्यक प्रयोग ही करें, अन्यथा आपके अस्तित्व के लिए ये हितकर नहीं होगा। आत्मरक्षा के लिए अहिंसा के सिद्धांत को त्यागने में संकोच नहीं करना चाहिए। तथागत बुद्ध की अहिंसा सम्यक अहिंसा है, जिसका अर्थ है कि आप अपनी ओर से कोई हिंसक कार्यवाही न करें, परंतु आपको आत्मरक्षा का पूर्ण अधिकार है। यदि कोई आपके प्रति हिंसा करे तो आपको अपनी सुरक्षा हेतु जितनी भी हिंसा की आवश्यकता हो आप कर सकते हैं। इस सिद्धांत का पालन करते हुए ही उन्होंने भिक्षु संघ में सैनिकों का प्रवेश वर्जित कर दिया था।
7: एवं एक समय विदुड़ब को भी कपिल वस्तु पर आक्रमण करने से नहीं रोका। कुछ बौद्ध शासकों के द्वारा तथागत बुद्ध की शिक्षा को सही नहीं समझकर अपनी सेना को अहिंसा का पाठ पढ़ाना उनके लिए घातक सिद्ध हुआ।

इसमें मुख्य रूप से यदि सम्राट अशोक एवं सम्राट बृहद्रथ का इतिहास पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। मूल मंत्र। वर्तमान में हमारा मूल मंत्र वो होना चाहिए जो सनातन रक्षक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा दिया गया था। देव शिवा वर मोहे ईहे, शुभ कर्मन्ते कबू न टरो, न डरो असी सो जब जाए लड़ो, निश्चित कर अपनी जीत करो। उपयुक्त मंत्र का अर्थ होता है कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वर दें मैं अच्छे काम करने से कभी पीछे न रहूं, मैं डरू नहीं, जब अपने शत्रु से लड़ूं तो मैं अपनी जीत सुनिश्चित करूं। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र चेतना में। जय हिंद। एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

जय हिंद, नमस्कार, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और शुरू हो चुका है आपका अपना कार्यक्रम जय जवान जय किसान। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गन्ने की कटाई के बाद क्या हम गुड़ का बिजनेस भी अपने गांव में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि अपने गांव में रहकर हम किस प्रकार ज्यादा कमाई के साधन जुटा सकते हैं या कुछ ऐसे छोटे मोटे उद्योग धंधे शुरू कर सकते हैं जिनसे किसान भाइयों को शहरों की तरफ रुख न करना पड़ेगा या गांव से पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो कटाई का समय, क्योंकि आजकल गन्ने की कटाई शुरू

हो चुकी है। आपको पता ही है गन्ने की कटाई के साथ ही कुछ नए बिजनेस भी शुरू हो जाते हैं गांव में, आज इसी बारे में चर्चा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बड़े हसी रागनी के साथ।

जय जवान जय किसान में आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूं वास्तु कृष्णा। दोस्तों, गन्ना बहुत ही अच्छा एक ऐसा प्रोडक्ट होता है किसान भाई के पास में, जो कि कच्चे माल के रूप में होता है। कच्चा या बहुत देर से काटने पर रिकवरी और मिठास प्रभावित हो सकती है कि अगर बहुत ज्यादा अगेती आप गन्ने की कटाई कर देते हैं, आपकी पैदावार घट सकती है। तो कटाई से पहले गन्ना पक चुका है या पूरा टाइम हो चुका है, इस बात का हमको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप गांव में रहकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो इसी टाइम पर ये काम, यानी गुड़ और शक्कर का काम आप कर सकते हैं। एक छोटा कोल्हू या कलेसर भी आप गांव में लगा सकते हैं। देखिए, जब बात हो अपने गांव में कोई ऐसा काम शुरू करने की, तो गुड़ का बिजनेस सबसे अच्छा होता है। एक छोटा सा कोल्हू आप लगा सकते हैं अपने साथ में कुछ किसान भाइयों को जोड़कर या अपने परिवार को जोड़कर। केवल ये जो सर्दियों का ही सीजन नहीं होता, सर्दियों की शुरुआत से कई महीने पहले और सर्दियां खत्म होने के बाद भी कई महीनों तक ये काम चलता है। यानी तकरीबन 2 या 3 महीने के लिए ही ये काम बंद रहता है। ये पूरा साल चलने वाला बिजनेस है। इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं आपको मिलती है।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: जयकार शेर वाली दा बोल साची दरबार की। हाँ।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। गांव में अगर कोई बिजनेस शुरू करे हमारे किसान भाई, तो गन्ने से गुड़ बनाने का या शक्कर या खांड बनाने का बिजनेस बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है। इसमें कम से कम 10 से 12 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर मुनाफा अच्छे खासा कमा सकते हैं। देखिए, गन्ने को काटकर कई दिनों तक पड़ा नहीं रखना है अगर आप बिजनेस करते हैं तब भी, और कोल्हू अगर आपके पास है आज की डेट में तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। जितनी जल्दी गन्ने की पेराई हो जाएगी उतना ही अच्छा क्वालिटी वाला गुड़ या शक्कर आपको मिल जाएगा और गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी।

0: आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। मैं हूं वास्तु कृष्ण और जय जवान जय किसान कार्यक्रम में आज हम गांव में होने वाले गुड़ के बिजनेस के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। अगर किसान भाई चाहें तो अपने साथ में 10 से 15 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और अपना एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू हो सकता है। देखिए, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको। मंडी के भाव, गुड़ कहाँ जाता है, वो कौन से सेठ होते हैं जहां पर गुड़ बेचा जा सकता है, मंडी में किस प्रकार अच्छा भाव मिलेगा, इसकी थोड़ी तैयारी और जानकारी जरूर लेनी चाहिए। और जो कोल्हू होता है वो गांव से थोड़ा ही दूर खेतों के ही बीच में बनाया जाता है। गांव से थोड़ा सा दूर बनाना भी चाहिए क्योंकि वहां पर अगर आप इंजन से चलाते हैं या बिजली से भी चलाते हैं तो गांव वाले लोगों को डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि धुआं भी होता है, भाप भी होता है, तो दिक्कत ना हो, इसलिए गांव से थोड़ा सा दूर आपको बनाना चाहिए। इससे किसानों को भी आसानी होती है कि खेत से अपना गन्ना काटकर पास में ही वो कोल्हू पर डाल सकते हैं, तो आपके कोल्हू पर गन्ना डालना प्रेफर करेंगे। अगर आप अच्छे रेट रखते हैं तो ज्यादातर किसान भाई कोशिश करेंगे कि आप ही को अपना माल दें। भरोसा जीतना बहुत जरूरी होता है। मंडी का भाव, रेट, क्वालिटी, प्रोडक्ट, ये सब तो बाद की चीजें हैं। सबसे पहले कच्चा माल कहां से आएगा, किसानों के पास से आएगा। किसानों का भरोसा जीतना, किसानों का ध्यान रखना, ये सबसे जरूरी हो जाता है गुड़ के बिजनेस में। और देखिए, गुड़ की खपत तो अच्छी होती ही है, मंडी में भी होती है और लोकल में भी तमाम लोग अच्छा क्वालिटी वाला गुड़ और शक्कर खरीदना पसंद करते हैं।
1: हूर मेनका विश्वामित्र के यहां ठहर जाती है, उसकी तपस्या भंग हो जाती है। 10 महीने तक रुकी, वहां पर एक लड़की को जन्म दिया और उस लड़की को पहाड़ के ऊपर डाल के वह मेनका वापिस रुकपुरी चली जाती है। बताते हैं उस लड़की की रक्षा पक्षियों ने की। शकुन कहते हैं पक्षी को, कला माने लालन पालन करना। जिसकी पक्षियों ने रक्षा की हो ऐसी शकुंतला, तो वहां पर कुदरती कनव ऋषि शहर के लिए जा करते थे, स्नान के लिए जा करते थे, तो उसने उस लड़की को देखा और अपने डेरे में ले आए, उसका लालन पालन किया। इस तरह 15-16 साल बीत जाते हैं, वह लड़की शकुंतला जवान हो जाती है। एक बार की बात है कि राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के और वो सैर करते हुए, शिकार खेलते हुए जंगल में आ जाते हैं और उस कनव ऋषि के डेरे में पहुंच जाते हैं। जब शकुंतला उसने दिखाई दी तो दूर से ही कामदेव का तीर लगता है और शकुंतला को राजा दुष्यंत क्या करते हैं।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिले

0: नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल।

छोटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

जय जवान जय किसान कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गुड़ के बिजनेस की और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। दोस्तों, गुड़ का बिजनेस बहुत ही लाभकारी होता है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन परिवारों ने पीढ़ियों पहले ये गुड़ का काम शुरू किया था, उनके बच्चे आज भी इस काम को बढ़ा रहे हैं। और गुड़ का बिजनेस हर रोज नई टेक्नोलॉजी के साथ भी आगे बढ़ रहा है। अब पुराने जमाने की तरह ट्रेडिशनल तरीके से ही गुड़ नहीं बनता, नई नई मशीनें आ चुकी हैं। कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे हो, अब एक छोटी सी फैक्ट्री नुमा कोल्हू लग सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना बजट लेकर चलते हैं, आप कितना पैसा शुरू में लगाते हैं। तो अगर आप फ्यूचर को देखते हुए इस फील्ड में आना चाहें, मतलब आप एक छोटा काम शुरू करें लेकिन ये समझे कि आपको लंबा खेलना है, यानी आप काम को इस तरह से शुरू करें कि आने वाली पीढ़ियां भी इस बिजनेस को लेकर आगे बढ़े। गुड़ की डिमांड बढ़ रही है, खपत बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं, यानी ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है या फील्ड है इसमें बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं हैं।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: जय हिंद, जय जवान, जय किसान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज के आपके इस स्पेशल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे गांव में रहकर आप गुड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, हमारी यानी सुभारती आजाद हिंद रेडियो परिवार की हमेशा यही कोशिश रहती है कि किसान भाइयों को कुछ ऐसे उपाय, ऐसे छोटे मोटे धंधे बताएं, गांव में रहने वाले उद्योग धंधे, ऐसे काम वो कर सके कि शहरों की तरफ उनको या उनके परिवार को पलायन न करना पड़े या छोटी मोटी नौकरियों के चक्कर में पड़कर वो गांव को न छोड़ना पड़े। गांव में रहकर ही आप खेती के साथ साथ ऐसे बहुत से काम है जो कर सकते हैं। ऐसे ही आज हमने यहां पर गुड़ शक्कर के काम के बारे में जिक्र किया है। अगर आप इस काम को करते हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं 9639012111 पर। देखिए, किसी ना किसी को कभी ना कभी शुरुआत तो करनी ही होगी। अगर आपके परिवार में हमेशा से ही खेती होती आई है, जमीन भी कम है और शहर नहीं जाना चाहते तो गांव में रहकर क्या करें, यह एक छोटी समस्या बन जाती है कि क्या करें समझ नहीं आता है। तो गुड़ या शक्कर का बिजनेस आप जरूर कर सकते हैं, इसमें पूरा फ्यूचर आपको देखना चाहिए। गुड़ की और शक्कर की खांड की डिमांड लगातार बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं, कच्चा माल भरपूर मात्रा में आपके ही एरिया में उपलब्ध है, तो ऐसे में आपको कहीं दूर क्यों जाना है। आप ऐसा काम करें जिससे कि आपका माल बिके भी और कच्चा माल आसानी से उपलब्ध भी हो जाए और मंडियों में भी बड़ी आसानी से हमारा गुड़ बिक जाता है, लोकल मार्केट में भी बिक जाता है।

0: ओ मेरी सासू की, भर लाई पानी।
1: आज तई ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो।
2: ए सेठानी, नीर बनन चलेगी
1: आज? ना जाऊंगा ना, गई तो पूरी बन ठन कर जाऊंगी।
0: तेरे के न्यू जान में बिजली पड़े है, तू किनारिये जागी।

आज हमने यहाँ पर बात की है गुड़ और शक्कर की। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। जय जवान जय किसान, ये आपका अपना कार्यक्रम है। हमारी कोशिश रहती है कि ऐसी बातें करें कि किसान भाई सरकार के द्वारा मिलने वाली योजनाओं का ज्यादा लाभ कैसे लें और सरकार किस प्रकार किसानों की मदद कर रही है उसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचाएं, और आप गांव में रहकर कैसी नई नई जमाने की फसलों को ट्राई कर सकते हैं, नए बिजनेस को ट्राई कर सकते हैं, और पुराने ट्रेडिशनल खेती को या पुराने बिजनेस को भी नए तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे आसानी से कर सकते हैं जिससे कि तरक्की जल्दी और बेहतर हो सके। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नंबर है 9639012111।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
7: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की

2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभा आरती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। मां थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई है। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम हिया इसका एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैक छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम हमारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहां जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब एक बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है। तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी एक डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है,
1: दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह, बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
1: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहां व्यवस्था हो वहां यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है।
2: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो।
1: ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए,

0: और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
1: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
0: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या HPV वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
1: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है। कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
0: यही तो समझदारी है। जो नहीं पता, उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता। उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
2: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए। परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
1: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
0: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
1: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
0: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
2: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
1: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हां कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
0: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
1: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी, उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
0: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना, हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
2: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं, हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां? ये भी गलतफहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
1: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है, तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
0: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
1: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
0: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे

0: से होगा पूछो, जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
1: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
0: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
1: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
0: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
1: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
0: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो, जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई हैं।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है, डर अभी भी है पर अब डर के सामने जवाब भी है।
0: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
1: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
0: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
1: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UWIN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
3: अरे स्मार्ट NGO प्रस्तुत करता है।

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, और लेकर आई हूं आज आपके लिए बहुत ही खास बातें। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है जो मैं आज आपसे साझा करने वाली हूं, वो स्मार्ट एनजीओ के सौजन्य से है और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई, जिसमें हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपकी सेहत से रिलेटेड होती हैं। वहीं आपको हम समय समय पर जानकारी देते हैं कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, या उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो गर्भावस्था में हैं इस वक्त और किस तरीके से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं और अपने खाने पीने की ध्यान रख सकती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि परिवार किस तरीके से उस महिला की मदद कर सकता है। देखिए, ये सफर बड़ा ही कठिन होता है, तो ऐसे में परिवार की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी काफी मायने रखती है। जैसा कि आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के स्वास्थ्य का ख्याल रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसी दौरान शरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं, जिसमें से एक आम समस्या होती है खून की कमी, जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। और अक्सर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हम जाने अनजाने ऐसे ही जाने देते हैं, हमें लगता है क्योंकि गर्भावस्था में ऐसा होता ही है, तो ये एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, कई बार सिम्टम्स आम होते हुए भी हमें समझ नहीं आता कि वो किस ओर इशारा कर रही हैं। तो चलिए कुछ इस बारे में आज आपसे जानकारी साझा कर देती हूँ। देखो, गर्भावस्था के दौरान जो शरीर में खून की कमी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक, और जिससे हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए अधिक आयरन की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और आप मानो कि अगर शरीर को पर्याप्त आयरन ही नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो अपने आप कम होता चला जाता है, और इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो आम होकर भी आम नहीं होते, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। इस अवस्था में एक महिला को बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, कमजोरी उसे महसूस हो सकती है, उसके चेहरे पर नाखूनों या आंखों के नीचे पीलापन आपको देखने को मिल सकता है, उसका सांस फूल सकता है, या उसको बार बार चक्कर आने की समस्या हो सकती है, सरदर्द उसे हो सकता है और हाथ पांव उसके ठंडे पड़ सकते हैं। और ये वही सिम्टम्स हैं, ये वही संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर यूं ही समझकर कि ऐसा तो होता ही है, ये समझकर हम टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सिम्टम्स को टालना नहीं है। जब भी ये लक्षण आपको दिखाई दे, एक बार जरूर अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एक बार जरूर अपनी जांच कराएं, क्योंकि जांच करा लेंगे तो आपके मन का जो वहम है वो भी निकल आएगा और साथ ही साथ जो आपकी स्वस्थ होने की अपडेट है वो भी आप तक पहुंच जाएगी। देखो, खून की कमी जो है वो आपके खानपान से होती है। अगर आप अपने खानपान का ध्यान रखेंगे, अपनी सही से देखभाल रखेंगी, तो खून की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बस ध्यान देना है अपने आहार पर, और आपका जो आहार होना चाहिए वो होना चाहिए आयरन से भरपूर, जिसमें कि आप पालक, मेथी, चुकंदर और बाकी की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो जरूर खाएं। साथ ही साथ जो फल होते हैं, खास तौर से अनार, खजूर, मुनक्खा और गुड़, ये भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और जो आपकी रसोई घर में दालें मौजूद होती हैं वो तो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होती हैं, तो रोजाना नहीं तो आप एक दिन छोड़ करके दाल जरूर खाएं। काला चना आप खा सकती हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और राजमा भी बहुत अच्छा रहता है, आयरन से भरपूर रहता है। वहीं आपको बता दूं कि विटामिन सी भी बड़ा ही जरूरी हो जाता है ऐसे टाइम में, तो आयरन को शरीर में अच्छी तरीके से सोखने के लिए विटामिन सी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए आप नींबू खा सकते हैं, आंवला, संतरा और टमाटर, इसको आप अपने जो खाने की थाली है उसमें जरूर शामिल करें, यानी कि जो खट्टी चीजें होती हैं, जो तासीर जिनका नेचुरली ही खट्टा होता है, आप उसको जरूर खाएं। और आयरन की गोलियां जो डॉक्टर देते हैं उसको आप सही समय पर लें, फॉलिक एसिड सही पर लें और नियमित रूप से उनका सेवन करें। ऐसे ना करें कि आज हमने खा ली, कल को हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये लापरवाही होती है और इसके जो परिणाम होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, और बाद में आपको लगता है कि हमने तो दवाइयाँ खाई थी, लेकिन आप एक शब्द भूल जाते हैं कि क्या आपने नियमित रूप से वो दवाई खाई भी थी या आपने छोटी सी लापरवाही बरती थी अपनी सेहत के साथ। तो अपनी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। इसी के साथ एक बात आपको जरूर बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं और आयरन की गोलियां वो खा रही हैं, उसको आप बिल्कुल भी चाय के साथ ना लें, कॉफी के साथ भी
बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आयरन को आपके शरीर में सोखने से रोक लेते हैं। इसे या तो आप सादे पानी से ले सकते हैं या नींबू पानी के साथ आप इसको लेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। और किस तरीके से आप गर्भावस्था में अपना देख रेख कर सकती हैं और क्या इसके खास तरीके हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो नियमित जांच करानी है, यानी कि डॉक्टर से समय समय पर आपको जांच करानी है, ANC विजिट करानी है, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच आपको नियमित रूप से करानी है। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जरूरी अल्ट्रासाउंड कराने हैं, अपनी मनमर्जी से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। अपनी जो डाइट है वो आपको बैलेंस लेनी है। प्रोटीन के लिए आप दूध, पनीर, दही, दालें, अगर अंडा खाती हैं तो अंडा भी आप खा सकती हैं। कैल्शियम के लिए, क्योंकि आपके बच्चे के विकास के लिए भी आपको कैल्शियम चाहिए होगा, तो वो आपको दूध और डेयरी उत्पाद से ही मिलता है, तो इसलिए वो आप जरूर खाएं। इसी के साथ दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर आपको पीना है। और दोस्तों एक खास बात और हो जाती है, मैं आपको बता दूं कि रात में कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी हो जाता है और दिन भर में भी आपको समय निकाल करके 1 से 2 घंटे आराम जरूर करना है, क्योंकि जितना आप आराम करेंगी उतना ज्यादा आपका जो शरीर है वो अच्छा महसूस करेगा। और सोते समय एक चीज आपको बड़ी ध्यान में रखनी है, बाईं करवट यानी के लेफ्ट साइड होकर के आपको सोना है। इस पोजिशन को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बच्चे तक रक्त संचार अच्छा रहता है। और ये नहीं करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिल्कुल रेस्ट मोड पर चले जाएं। लाइट एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, हल्का व्यायाम आपको जरूर करना है। डॉक्टर की सलाह लेकर के आप वॉक यानी के टहल सकती हैं या प्राणायाम भी कर सकती हैं। भारी सामान उठने से आपको बचना है और बहुत ज्यादा जो झुकने वाले काम होते हैं उनसे भी बचना है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आऊंगी। और आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में जो जानकारी आपसे साझा की जा रही है वो स्मार्ट NGO के सौजन्य से आपको कराई जा रही है उपलब्ध। और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई। अंत में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। देखो अगर गर्भवती महिला के पेट में तेज दर्द या ब्लीडिंग होती है यानी कि खून आना शुरू हो जाता है, इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसा आपको महसूस हो रहा है, ऐसे में भी जरूर एक बार अपने डॉक्टर से बात करें। चेहरे या हाथ पैरों पर अचानक से बहुत ज्यादा सूजन आ गई है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी है। और बच्चे की हलचल अगर कम महसूस आपको हो रही है, इस बारे में भी आप जरूर डॉक्टर से बात करें या आप अपने आसपास की आशा या आंगनवाड़ी वाली दीदी से भी बात कर सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं फिर से लौटूंगी ऐसी ही कुछ सेहत भरी बातों के साथ। अभी दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद, बाय बाय। ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जय हिंद, आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और अब आप सुनेंगे ये खास प्रस्तुति जिसके प्रस्तुतकर्ता है स्मार्ट एनजीओ।

दोस्तों आज हम बात करेंगे टीबी नामक रोग के बारे में, यानी क्षय रोग। अगर समय पर पहचान हो जाए तो टीबी का पूरा इलाज संभव है, पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इस बीमारी का नाम क्षय रोग, टीबी रोग या ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। ये सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों जैसे हड्डियों, दिमाग, किडनी और रीढ़ की हड्डी में भी ये हो सकता है। हमारे एक एक्सपर्ट डॉक्टर के अनुसार नाखून और बाल को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से में ये बीमारी हो सकती है। टीबी फैलती कैसे है? जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या जोर से बोलता है तो हवा में छोटे छोटे कीटाणु फैल जाते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें सांस के साथ अंदर ले ले तो उसे भी ये संक्रमण हो सकता है। ध्यान रखें, टीबी हाथ मिलाने से, साथ बैठने से, खाना साथ में खाने से या एक दूसरे के कपड़े छूने से नहीं फैलती। टीबी के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं दोस्तों, 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक लगातार खांसी रहती है, बलगम में खून आता है, बुखार विशेषकर शाम के समय चढ़ता है, रात में ज्यादा पसीना आता है, तेजी से वजन घटता है, भूख कम लगती है, कमजोरी और थकान ज्यादा महसूस होने लगे। यदि ये लक्षण दिखाई दें, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर संपर्क कीजिए। सरकार पूरी तरह से निःशुल्क आपको इसका पूरा इलाज मुहैया कराती है। सरकार टीबी के मरीजों की किस प्रकार और मदद करती है? सबसे पहले सरकार का एक लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत। सरकार द्वारा टीबी की जांच निशुल्क की जाती है, पूरी दवा बिल्कुल निशुल्क मुफ्त दी जाती है, मरीज का इलाज और नियमित फॉलोअप भी किया जाता है। इलाज के दौरान पोषण के लिए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत मरीजों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि वे पौष्टिक भोजन कर सकें। कई स्थानों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीज के घर तक दवा पहुंचाते हैं और दवा नियमित लेने में भी मदद करते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा मरीज आपको दिखता है जिसको टीबी हो सकती है या किसी को टीबी है, उसकी मदद आपको भी करनी चाहिए। टीबी की दवाएं सरकारी अस्पताल पर बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। आप इन्हें हमेशा समय से लेकर तयबद्ध तरीके से खाएं। इलाज को पूरा करना है, कभी भी इलाज को बीच में नहीं रोकना है। एक बार टीबी की दवा शुरू होने पर अगर आप इलाज बीच में रोकते हैं तो कुछ समय बाद टीबी वापस लौट कर आती है और पहले से ज्यादा भयानक रूप के साथ आती है, यानी पहले जो टीबी हुई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक इस बार ये बनकर लौटी है। बीमारी दोबारा लौट सकती है, पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है, दवाओं का असर भी कम हो जाता है और इस बार टीबी को नाम दिया गया है MDR टीबी, यानी पहले से भी भयानक टीबी। इसीलिए कभी भी टीबी बीमारी की दवाइयों को रोकना नहीं है, इलाज पूरा करवाना है। डॉक्टर जितने महीने जितने समय दवा खाने के लिए बोलें, इलाज पूरा कराएं। आपकी तमाम जांचें बिल्कुल निशुल्क सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं, सभी दवाइयां सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। सरकार मरीज को पैसे से भी मदद करती है, दवाइयों से भी मदद करती है और समय समय पर निक्षय पोटली यानी के खाने के लिए प्रोटीन युक्त कुछ चीजें भी देती है। तो आगे से हमेशा हमें ध्यान रखना है, लगातार खांसी रहे तो जांच कराएं, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढक लीजिए, घर में ताजी हवा और धूप आने जाने का रास्ता हमेशा होना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, धूम्रपान, तंबाकू और शराब से दूरी बनानी है। डॉक्टर ने जो बात बताई है, जो दवाइयां बताई है, उनको नियमित रूप से और पूरा लेना है। कोई भी दवा बीच में नहीं रोकनी, अपनी मर्जी से कोई दवा बढ़ानी नहीं है, कोई दवा घटानी नहीं है। मरीज के संपर्क में जो लोग आ गए हैं उनको भी अपनी जांच करानी चाहिए। अगर किसी परिवार में किसी को टीबी है, उस परिवार के तमाम लोगों की जांच निशुल्क होती है, करानी चाहिए। छोटे बच्चों की भी जांच करानी चाहिए और कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम संदेश, याद रखिए, टीबी छिपाने की नहीं इलाज कराने की बीमारी है। बहुत से लोग टीबी को छुपा कर रखते हैं, सामाजिक शर्म की वजह से, हीन भावना की दृष्टि से बचने की वजह से। लेकिन दोस्तों टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है। जिन लोगों ने सरकार की मदद से टीबी का पूरा इलाज कराया है आज वे बिल्कुल अच्छी तरह से स्वस्थ हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। इसीलिए अगर कभी भी
आपको ऐसा लगे कि टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर संपर्क कीजिए या आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। आज की ये कड़ी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है स्मार्ट एनजीओ, जिसे आपने सुना सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और चलते चलते मिलकर संकल्प लें, टीबी को हराना है, भारत को टीबी मुक्त बनाना है।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर।
4: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज, और बातें करने के लिए आपके साथ आपके बीच यहां पर हाजिर हूं और करूंगा आपसे ढेर सारी बातें। बाकी आपसे भी मैं कहता हूं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। बाकी हमारी बातों में कुछ अच्छे फैक्ट भी शामिल होते हैं, अच्छी बात शामिल होती है, कुछ ऐसी बात शामिल करने की मैं कोशिश करता हूं जो आपकी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाए। एंड इसी के साथ साथ अगर आप चाहें अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनना तो आप जरूर अपनी रिक्वेस्ट अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स के माध्यम से। अभी के लिए जाना आपको कहीं पर भी नहीं है, यहीं पर बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM मेरे यानी आपके अपने बिंदास आर्ष पंकज के साथ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

हाथ थामा था। आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आर जे पंकज। और चलिए जी, अभी हम करते हैं हमारी आज की अच्छी वाली बात, जो ये कहती है, जो कुछ नहीं करता केवल वही आलसी नहीं है, आलसी वो भी है जो अपने कार्य से अधिक कर सकता है परंतु करता नहीं है। सिंपल सा, सीधा सा और समझने वाला मतलब है। देखिए, एक आलसी इंसान वो होता है जो कुछ भी काम कभी भी नहीं करता। उसका नेचर ही है कि वो काम नहीं करेगा, हर काम में आलस दिखाएगा। लेकिन आलसी एक वो भी है जो अपने काम से ज्यादा कर सकता है लेकिन करता नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, अच्छे नंबर वो ला सकते हैं, अच्छी एजुकेशन वो पा सकते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। और जब पढ़ते नहीं हैं तो नंबर भी अच्छे नहीं ला पाते, और इसके बाद वो आगे की पढ़ाई भी कोई ऐसी करते हैं जो थोड़ा मतलब आसान हो, जिसके लिए उन्हें कम पढ़ना पड़े। तो अगर आप ऐसे आलसी हैं जो अपने काम से ज्यादा काम कर सकते हैं, तो वो आलस अपने अंदर से निकाल दीजिए और ज्यादा काम कीजिए, और देखिए फिर अपना रिजल्ट कितने आगे आप पहुंच जाएंगे। तो ये तो हुई हमारी अच्छी वाली बात। ऐसी अच्छी वाली बात आप भी चाहें तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। फिलहाल जाइए कहीं मत, सुनते रहिए ऐसे ही मुझे, यानी कि आपके अपने बिंदास आर शे पंकज को, आपके अपने रेडियो स्टेशन पर, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना, आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज और जी फुल बिंदास गिरी के साथ आपसे बातें शाते यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आपसे मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप अपना कोई फेवरेट ट्रैक सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होता है हमारे सोशल हैंडल्स पर। वैसे अभी सोशल हैंडल्स मैं देख रहा था हमारे रेडियो के, तो मुझे वहां पर मैसेज मिला पराग का, जो कह रहे हैं कि सर मुझे फिर और क्या चाहिए सॉन्ग सुनना है जरा हटके जरा बचके मूवी से। तो चलिए पराग के रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं और प्ले करते हैं इनका रिक्वेस्ट किया हुआ ये गाना फिर और क्या चाहिए। एंड पराग, एंजॉय दिस गाना, एंजॉय दिस ट्रैक।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपके अपने दोस्त पंकज को। अच्छा यार, दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास सभी तरीके की सुविधाएं हैं। उनके पास कार है, उनके पास अपनी बाइक है, अपना घर है और वो समय पर खाना भी खा लेते हैं, उन्हें तीनों वक्त का खाना मिल जाता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक वक्त का खाना खाने के लिए भी काफी सारी मशक्कत करनी पड़ती है और उनके सर पर जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों की, अपने परिवार की, और वो घर से कुछ ना कुछ बेचने के लिए बाहर निकलते हैं। ऐसे लोगों को आप रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर या कहीं चौराहों पर देख सकते हैं जो कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं और आपके पास आकर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर खरीद लो ना, एंड आप उन्हें इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। तो क्या वो करना सही है? जो वो बेच रहे होते हैं उसकी कीमत क्या इतनी होती है कि आप उसे खरीद नहीं सकते? शायद नहीं, इतना ज्यादा महंगा तो वो नहीं होता। उसकी कीमत 10, 15, 20 या 50 भी हो सकती है, और 50 तो शायद मैं ज्यादा ही कह गया, हद से हद 20 रुपए या 10 रुपए तक ही होती है। तो क्या हम वो खरीद नहीं सकते? खरीद सकते हैं ना, तो फिर इग्नोर करके क्यों निकलना? अगर हम उसे खरीद लेंगे तो अगला इंसान जो वहां पर उसे खड़ा होकर बेच रहा है उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके की हेल्प आप कर सकते हैं प्लीज। यही मेरा मैसेज है यहीं से आज कि इग्नोर करके ना निकला करें, खरीद लिया करें, चाहे एक ही खरीदें। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि दो खरीदें, तीन खरीदें या चार खरीदें। आपकी जितनी कैपेबिलिटी हो उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप खरीदें जरूर, चाहे एक खरीदें या दो। मैं बार बार ये कह रहा हूं, फोर्स नहीं करूंगा आपको, बस कहना था ये, सो कह दिया। अब उम्मीद आपसे यही करूंगा कि आप इस बात को मानेंगे और ट्रैफिक लाइट के आसपास या बस स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन पर कोई भी कुछ ऐसा बेच रहा होगा तो आप उसे इग्नोर नहीं करेंगे, उससे कुछ ना कुछ जरूर खरीदेंगे। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना पेंदास आरशे पंकज। अच्छा, हम जब भी यहां पर आते हैं तो आपसे ढेर सारी बातें कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आप हमसे बातें करना चाहें, हमें कोई सजेशन देना चाहें, हम तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाहें या अपने किसी फेवरेट ट्रैक को सुनना चाहें, तो आप ये कैसे कर सकते हैं? ये कुछ ही को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको अब मैं बता ही देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना होता है कि आपको कनेक्ट होना होता है हमसे हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। हम फेसबुक यानी कि मेटा पर भी हैं, और हाँ, इसके साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। वहां पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। और हमारे स्टूडियो का भी नंबर होता है, जो कि होता है 9639012111। इस पर भी आप कॉल या मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी कोई रिक्वेस्ट, अपनी कोई बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किशोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटका थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें। विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर्श पंकज, और लाइव आपसे मेरी बातें हो रही हैं। समय की बात करूं तो ठीक 6:40 हो चुके हैं मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, और शो चल रहा है गूंज। बाकी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आप यहां पर सुन रहे हैं, पंजाबी बॉलीवुड कवर हर तरीके के सॉन्ग्स मैं आपको यहां पर सुनाता हूं एक हर दिन की अच्छी नई प्लेलिस्ट को बनाकर। बाकी आपसे भी मैं कहता हूं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर बता सकते हैं। एंड एक चीज़ बताने की, देखने की, सुनने की यही है इन दिनों की, सेहत को लेकर थोड़ा सा सचेत रहिए। वो इसलिए क्योंकि बदलता मौसम है, धीरे धीरे धीरे जो है गर्मी जाना शुरू हो चुकी है। अब क्वांटिटी में काउंट अगर करना शुरू करें तो 1%, 2%, 3% ऐसे ऐसे काउंट करते रहिएगा, क्योंकि सेप्टेम्बर जाते जाते और अक्टूबर के आते आते हल्की हल्की सर्दी महसूस होने लगती है, ठीक है, सुबह और शाम के समय में खासकर। और देखा तो ये जा रहा है कि घर घर में जुकाम, खांसी, फीवर, गले में दिक्कत, है ना, समस्याएं बन रही हैं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, इवन सभी के साथ, और एक के साथ हो रहा है तो घर में वन बाय वन फिर लाइन लगे जा रही है। सो ऐसे में अपना ख्याल रखें, आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आँखों में जलन हो रही है, सर में दर्द है, गले में खराश है, या आपको लग रहा है कि आज थोड़ा बॉडी हीट कर रही है, अलग सा महसूस हो रहा है, नॉर्मल महसूस नहीं हो रहा है, बहुत एनर्जी डाउन हो रहा है, तो तुरंत अपना फीवर वगैरह चेक करें, और ज़्यादा लगता है तो तुरंत जाकर डॉक्टर से भी मिलना है और दवाई लेकर आनी है, रेस्ट करना है थोड़ा सा, ये चीज़ें करनी है। और घर के छोटे बच्चे जो हैं, आप जब थोड़ा सा वायरल वगैरह भी चल रहा है तो अगर आप फीवर वगैरह में हैं तो उनको थोड़ी सी देर के लिए अपने आप से आप दूर रख सकते हैं जब तक आप नॉर्मल ना हो, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक होती है बड़ों के मुकाबले और उनको जल्दी ऐसे समस्या हो जाती है। तो ये होता है, बाकी अपना ख्याल रखिए, परिवार का भी ख्याल रखिए, और हम तो यहाँ पर हैं आपसे बातें करने के लिए, यूं ही करते रहेंगे, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आपको सुनाते रहेंगे, जाइएगा कहीं मत फिलहाल, और सुनते रहिए यूं ही आपके अपने आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM को, मेरे यानी आपके अपने बिंदास आर्ज पंकज के साथ। अगला ट्रैक आ रहा है गबरू।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स 24 घंटे, डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे, मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज, और अभी वही यहां अपने स्टूडियो में हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। और चलिए अभी आपसे करते हैं हमारा आज का फिल्मी क्विज। आज का फिल्मी क्विज हमेशा की तरह आसान है और कंडीशन के साथ है। बस कंडीशन ये होती है कि आपको जवाब सबसे पहले देना होता है और करेक्ट देना होता है। ऐसा आप जब करते हैं तो आपको मिलता है हमारे रेडियो की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। तो अभी के क्विज के लिए तैयार हैं आप? चलिए क्विज करते हैं आपसे। आज के क्विज में आपको मुझे बताना है जो सिंघम मूवी है, अजय देवगन जिसमें लीड में है, इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है काजल अग्रवाल, उनका इस मूवी में जो कैरेक्टर है उनके कैरेक्टर का क्या नाम होता है। इतना सा बस आपको मुझे बताना है। कंडीशन आपको मैंने बता दी है और अब आपको ये बताता हूँ जवाब आपको मुझे भेजना कहाँ पर है। जवाब आप मुझे भेज सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। इंस्टा पर आप जा सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के, या फेसबुक यानी कि मेटा पर भी आप जा सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के, और यहाँ पर जाकर अपना जवाब भेज सकते हैं। जवाब सबसे पहले आया और करेक्ट आया तो आपको मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप भूले ना। तो फिलहाल जल्दी कीजिए और अपना जवाब हमें भेजिए। आपके जवाब का मैं वेट करूंगा अपकमिंग गाने के साथ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हाँ तो जी, जवाब तो आपके मुझे मिल गए हैं और अब मुझे चुनना है कि सबसे पहले और करेक्ट जवाब किसका आया है। ओ, आपका अगेन वेलकम करना तो भूल गया। हाँ तो जी, वेलकम बैक है जी, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना पिंदास सार शे पंकज। आप ठीक है ना? वेलकम बैक हो गया। अब आगे बात करते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले आपसे मैंने किया था एक क्विज, जिसमें मैंने आपसे पूछा था बॉलीवुड मूवी जो है सिंघम, जिस मूवी के लीड एक्टर हैं अजय देवगन, इस मूवी की लीड एक्ट्रेस का नाम भी आपको पता है, जिनका नाम है काजल अग्रवाल, उनका जो कैरेक्टर है इस मूवी में, उनके कैरेक्टर का क्या नाम होता है। इतना सा बस आपको मुझे बताना था। तो जवाब हमारे पास कई सारे आए हुए हैं, अभी मैंने शुरू में ही बता दिया था, लेकिन उसमें से अब ये देखना था कि सबसे पहले और करेक्ट जवाब किसका आया है। तो हमें जो सबसे पहले और करेक्ट जवाब मिला है, ये जवाब हमें मिला है सुचित्रा जी का। इन्होंने मुझे बताया है कि सिंघम मूवी की जो लीड एक्ट्रेस हैं काजल अग्रवाल, उनका इस मूवी में जो कैरेक्टर है, उनके कैरेक्टर का नाम होता है काव्या। भाई बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका और आपने जवाब भी हमें सबसे पहले भेजा है, इसलिए आपको मिल रहा है हमारे रेडियो की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। आप हमारे स्टूडियो आ सकती हैं, हमारे रेडियो आ सकती हैं और अपना सरप्राइज गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। फिलहाल अभी जाइए कहीं मत, सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता, बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए, अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी

उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज और अभी अपने स्टूडियो में बैठा हूं आपसे एकदम लाइव बातें कर रहा हूं। अच्छा भाई, रोजाना आपसे हमारी बातें होती हैं, आप इतने प्यारे श्रोता हैं हमारे और रोजाना हमें सुनते हैं। सो अभी एक श्रोता के बारे में ही मैं आपसे बात करने वाला हूं, इनका नाम मैं नहीं लूंगा, इन्होंने मना किया है कि सर मुझे पता है मैंने आपसे ऐसी बात की है तो आप जरूर अपने शो में इस बात को शामिल करेंगे, पर मेरा नाम मत लीजिएगा। चलिए मैं उनकी बात को रख लेता हूं, लेकिन मैं बात जरूर करूंगा क्योंकि इतनी बुरी नहीं है। देखिए ऐसा हुआ अभी ना कुछ समय पहले, मैं जब अभी शो कर रहा था तो भाई कई सारी कॉल्स हमारे पास आती हैं, कुछ हम रिसीव कर पाते हैं और कुछ नहीं रिसीव कर पाते हैं। ऐसा ही सोशल हैंडल्स पर भी होता है कि कई बार हमसे कोई मैसेज छूट जाता है पढ़ने से, लेकिन सोशल हैंडल्स के वैसे जितने भी मैसेजेस होते हैं हम पढ़ते जरूर हैं। बट अभी कॉल आई मेरे पास तो कहने लगे कि सर एक शिकायत है आपसे। मैंने कहा पहले आप अपना नाम तो बताइए। फिर उन्होंने अपना मुझे नाम बताया, फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप हमें सुन कहाँ रहे हैं, तो कहने लगे कि सर हम आपको जंगेठी मेरठ में सुन रहे हैं। और फिर मैंने पूछा कि हाँ बताइए आपकी शिकायत क्या है, तो कहने लगे कि सर आप ना नंबर बहुत जल्दी बताते हो, हम लिख नहीं पाते। तो मैंने कहा अगर आप लिख नहीं पाते तो ये आपने कैसे मुझसे संपर्क किया। फिर उन्होंने कहा कि सर आपकी ऐप के माध्यम से हमने नंबर जैसे तैसे निकाला है और आपसे बात कर रहे हैं। तो भाई जो हमारा नंबर नोट नहीं कर पाते उन्हें मैं बता देता हूं हमारा नंबर। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, चलिए नंबर आपको बताता हूं, 9639012111। हिंदी में भी बता देता हूं, 9639012111। उम्मीद करता हूं अभी जिन भी लिसनर्स की अगर इस तरीके की कोई शिकायत होगी वो दूर हो गई होगी और उन्होंने हमारा नंबर नोट कर लिया होगा। भाई ये तो देखिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी के साथ ही साथ आप हमसे हमारे सोशल हैंडल्स पर भी जरूर जुड़े अगर आप सोशल हैंडल्स यूज करते हैं तो। और वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमसे कोई भी कॉल मिस ना हो, लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि एक समय में ही कई लोग कॉल करते हैं, कई लिसनर्स कॉल करते हैं, तो बताइए एक समय में तो एक ही कॉल उठा पाएंगे ना हम। लेकिन सोशल हैंडल्स पर सभी के मैसेजेस का रिप्लाई हम एक साथ कर सकते हैं धीरे धीरे, तो आप सोशल हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल जाइए कहीं मत, सुनते रहिए ऐसे ही एक अच्छे श्रोता की तरह आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स 24 घंटे, डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे, मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं कर सकते तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है। और आपको लगता है कि आप वहां जाकर कुछ खरीदने वाले हैं तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है। एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सारश पंकज। और तू आके देख ले, अभी अभी आपने सुना किंग की वॉइस में, बड़ा ही प्यारा ट्रैक है, अच्छे खासे व्यूज हैं और बहुत सुना जाता है, अभी भी सुना जाता है और बहुत लोगों ने प्यार दिया। एंड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, कई रियलिटी शो में भी देखे जा चुके हैं एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, काफ़ी अच्छा गाते भी हैं। रैप के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं क्योंकि रैप भी ये बहुत सॉलिड करते हैं। बाकी आपसे मैं कहता रहता हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कह सकते हैं, बता सकते हैं, कहने बताने के लिए आ सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर भी। और मैं तो यहाँ पर हूँ, आपसे बातें करता रहता हूँ। बाकी आपसे भी मैं ये कहता हूँ कि कुछ आपको कहना है दिन में, तारीख में कुछ रिलेटेड आपको पता है, कोई अपडेट है आपके पास, ट्रैफिक अपडेट है, वेदर अपडेट है, वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। किसी गाने की फरमाइश आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर होते हैं अपने शो में, यानी कि गूंज हमारे शो का नाम होता है। यहाँ पर हम अपने शो में बैठे रहते हैं आपसे बातें करने के लिए, आपके लिए अच्छे अच्छे सॉन्ग्स प्ले करने के लिए, आप तक कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। फिलहाल अगला सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं जोगी माही, और इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट हमारे पास भेजी है अनु ने, तो आइए उनकी रिक्वेस्ट पर सुनते हैं इस ट्रैक को फ्रॉम द मूवी बचना ए हसीनों।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़े दान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज, और एहसास आप सुनने जा रहे हैं। एंड इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भाई फिलहाल मुझे आपको कहना होगा अलविदा। दो ट्रैक आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, एक एहसास होगा, इसके बाद एक और ट्रैक आपको सुनने के लिए मिलेगा। बाकी कहना आपसे यही है कि जाना आपको कहीं भी नहीं है, बस यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जल्दी मिलेंगे सेम टाइम सेम शो पर, तब तक रखिए आप अपना ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर। मैं आरजे पंकज लेता हूं आपसे विदा।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।